0: मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डूसू इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तक जो है एक स्टार कैंपेनर के तौर पे काम किया है और पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों ने जो है एनएसयूआई को बहुत मजबूती से जो है वोट दिया है। मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने एनएसयूआई के पैनल को वोट किया है मैं उनको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि एनएसयूआई जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे करी है वो उनके लिए लगातार पूरे साल काम करेगी और उनको उन वादों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेगी।
1: आप विनोद ये बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी, आपने जीतने की कोशिश भी की, आप कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए। सवाल तो इस बात पे भी खड़ा होता है ना कि फिर राहुल गांधी क्यों नहीं प्रचार करने जाते हैं। जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाते हैं डूसू इलेक्शन में भी वो जाते हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि राहुल गांधी एक और छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जेंजी हमारे साथ हैं, अब जो रिजल्ट आए हैं उसमें तो जेंजी ने अपना वोट दे दिया, स्पष्ट कर दिया।
0: देखिए ये मैंडेट जेंजी का नहीं है, आप देखिए ना कि सारे बिल्कुल बेशक चुनाव जीते हैं, उनका जीत का आंकड़ा देखिए, जीत का नंबर नॉट ए गेम, लड़ाई नंबर की नहीं है, हमें विपक्ष में कितना वोट पड़ा है वो महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी जी की रही प्रचार की बात, तो ये छात्रों का इलेक्शन है, छात्रों का इलेक्शन, छात्र लड़े, देश के प्रधानमंत्री जो है कैंपेन में आ रहे हैं तो छात्रों का इलेक्शन तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है ना। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को यही डर सता रहा था कि कैसे भी करके जो है चुनाव जीतना है।
2: And were the Delhi University Students Union elections result that are now out? Celebrations were there on the campus following a closely watched election. The AVVP won 3 central panel posts while independent candidate Dipanshu Shaukeen secured the vice presidential post. Dipanshu Shaukeen's victory gives an independent candidate the vice president post in year's DUSU central panel, and Shaukeen's independent campaign ends with a win in one of Delhi University Student Union's key positions. Shaukeen, remember, has credited the younger generation of the voters, saying Gen Z students are more aware and cannot be easily misled. Shaukeen has also said that that his focus after the victory would be on doing what he described as honest work for students in a Gen Z coordinate post. He tweeted on X and said, "It's done, bro."
3: पांचों आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत पर? आपको एनएसयूआई की तरफ से आप खड़े होने वाले थे पर फिर आपने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, क्या हुआ एग्जैक्टली और अब आप अपनी जीत को कैसे देखते हो?
4: ये जीत छात्र शक्ति की हुई है, स्टूडेंट्स की हुई है, जो भरोसा स्टूडेंट्स ने मुझ पर दिखाया उनकी एक आप देख सकते हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीत होना साफ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स की पहली पसंद, जेन जी की पहली पसंद दीपांशु शौकीन को उन्होंने माना कि मैं उनके बीच से निकल कर उनकी आवाज़ को मैं उठा रहा हूँ और स्टूडेंट्स ने जो भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरूंगा।
3: क्या आप इससे सीजेपी के बाद का एक आफ्टरमाथ इफेक्ट भी देखते हैं कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स चेंज हुए हैं डूसू में?
4: स्टूडेंट्स ने प्रूव किया है कि जब जब उनके साथ गलत हुआ है तो वो आवाज़ उठाते हैं, अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं और वही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में करके दिखाया है।
2: Now the results of the Delhi University Student Union elections have given the BJP leaders fresh ammunition against the Congress party. While the NSUI drew a blank, Kiran Rijiju said that Jhoot Ki Goonj has been demolished completely as Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign came under fire. The ABVP has won 3 of the 4 key DUSU posts, retaining control of the central panel. A Congress-backed NSUI, meanwhile, has failed to win any of the 4 central positions. Reacting to the verdict was also Union Minister Kiran Rijiju and JP Nadda, who mocked Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign, saying Jhoot Ki Goonj has been demolished completely. The result comes amid Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj campaign that is being recently held in Indore in Madhya Pradesh, while Shaukeen's independent victory has another dimension to the AVVP-NSUI contest. The election also comes days after the Satyaniketan hostel collapse and amid NSUI allegations of poll rigging and administrative favoritism towards the AVVP.
5: Delhi University mein AVVP ka itna prachand jeet ye dikhata hai ki Congress aur opposition party ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं एवीबीपी के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूँ।
6: आज डूसू के परिणाम आए हैं, एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। आपको बता दें कि दिल्ली में एबीवीपी की जो शुरुआत की, जो बीज बोया था वो जेपी नड्डा जी ने बोया था, हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
7: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है, दिल्ली में भी काम करने का एबीवीपी में मौका मिला है, लगभग साढ़े चार साल काम किया है। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकतों
6: की। पर एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है,
7: वहाँ की गूंज तो सुनाई दी नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना।
8: मैंने अभी सुना है कि NSUI के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी दो तीन सीट पे उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो दो तीन सीटों पर हम लोग हारे हैं ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
2: On to other stories that we're tracking from the state of West Bengal, the TMC split has triggered a direct fight over the party's name, symbol and organizational control, with the election commission freezing the original identity for the upcoming by-polls. Mamata Banerjee has challenged the election commission order in the Supreme Court after the poll panel froze the original TMC name and flowers and grass symbol for the upcoming by-polls. The BJP says that the election commission acted within its rule while dealing with the rival claims over the TMC name and symbol. Rahul Gandhi has pointed to the TMC dispute alongside earlier Shiv Sena and NCP split. Rahul has described the TMC episode as a part of a what he calls a wider pattern of vote theft, government theft and the party theft as well. Rijiju meanwhile has hit back at Rahul by pointing to the origins of both NCP and the TMC as breakaways from the Congress party.
9: দেখুন এগুলো নিয়ে কিছু হবে না, ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে সব পক্ষের কথা শুনে করেছে। উনি ওনার দলকে একদিন রাখতে পারেননি, দলের মধ্যে কি দুভাগ তিনভাগ চারভাগ হয়েছে তার দায় দায়িত্ব তোমরা, এটা আমাদের কোনো সরাসরি বিজেপির রোল নেই। তবে আমি বলি একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন গণনার দিন রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক এরা থাকবেন, তার কারণটা হচ্ছে অতি দর্পে হত লঙ্কা অতি মানে চক।
10: कहीं दिनों से कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ हमारा लीडर ममता बनर्जी को बातचीत कम्युनिकेशन हो रहे थे, लेकिन ये जो अभी तो ये जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल डिसीजन है, ये सामने पूरा देश में एंटी भाजपा जो यूनिटी का बात हम लोग कर रहे हैं, सेकुलर फोर्स का, डेमोक्रेटिक फोर्स का, प्रोग्रेसिव फोर्स का, तो इसीलिए नंदीग्राम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी डिसीजन लिए हुए है, आज ममता दीदी ने ये अनाउंस कर दिया।
11: In yet another attempt to defame the Election Commission of India and attack the Bharatiya Janata Party, Rahul Gandhi ends up exposing the sordid history of the Indian National Congress. Is it not true that in the year 1980, the then Congress government, misusing Article 356, dismissed 9 state governments? Why is it that Rahul Gandhi insists on attacking the Election Commission, which is hailed the world over as the harbinger of not only democracy, but also a commission that has used modern technology to ensure that every vote counts?
12: कांग्रेस पार्टी हमेशा मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहता है
13: जी।
12: चुनाव आयोग को जल्दी से जल्दी जो सिद्धांत लेना था वो नहीं लिया, और उसका कारण जो आज ये डेमोक्रेसी में क्राइसिस क्रिएट हुआ है, आज कोई सिंबल में कोई जीत जाता है उसका बाद उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके काम करता है, ये एक ऐसा एनार्की इनसाइड द डेमोक्रेसी व्हिच इज वेरी डेट्रीमेंटल इन आवर्स society in our country.
14: ममता बनर्जी का तृणमूल तो कोई खेला लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, करोड़ों लोगों को धोखा दिया था मेसी को लाकर, एक झलक मेसी को देख नहीं पाए, खेला हो बे खून को लेकर खेला किया, तो फुटबॉल का प्रतीक मत लगाइए ममता बनर्जी, खून का प्रतीक लगाइए, 15 साल तो खून किया है अपना सरकार, आपका सरकार खून हुआ है, उसका विचार नहीं किया है, खून किया है सत्ता के लिए, तो फुटबॉल मत लगाइए। फुटबॉल तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भगवान के पास अगर जल्दी पहुंचना है तो खेलो, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मत लगाइए, आपका शोभा नहीं देता है। खून का प्रतीक लगाइए।

0: Wakode from the Department of Energy Science and Engineering was allegedly caught using a mobile phone during an exam. The IIT Bombay University now says that he had uploaded the question paper on ChatGPT to seek answers, but no disciplinary action had been initiated. The institute says that the student was counseled and assured the incident would not affect his academic career. However, the students protesting on the campus are alleging a different sequence of events, including claims that he was removed from the exam. They were demanding an inquiry into the action taken against Sahil and have also sought the resignation of the Dean of Administrative Affairs in the university. We have a couple of reactions coming in on that big story.
1: आज हमारा ये प्रोटेस्ट के कारण है कि आज हमारा कॉलेज में सुसाइड हुआ था, तो इसलिए हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और आंसरेबल होने के लिए हम आज प्रोटेस्ट के लिए आया था। और अभी ये पहली नहीं है, यही साल में 4 हो गया और 2 महीने में 2 हो गया, तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा क्यों हो रहे, क्या रीजन है सब कुछ। हमारा डीन, डायरेक्टर साहब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में है उसको हमको बस ये रिपोर्ट दे दो कि हम जानकारी लेंगे, हम वी विल बी आंसरेबल टू दैट, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी सब हम लेंगे और इससे आगे कुछ ऐसे नहीं होगा हमारी तरफ से।
2: आईआईटी पवई में एक स्टूडेंट ने सुसाइड की थी, उसके बाद आईआईटी के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए और उनकी मांगों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। इसमें आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चर्चा करके कुछ अमिकेबल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे पुलिस का भी एक प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है।
0: A major NDTV impact in Bengaluru has taken place. Our report on the city's pothole mess has prompted action from the Karnataka government. Following our coverage, authorities have ordered repairs of potholes and identified black spots as well, while also planning an alternate route to ease the traffic. The government has also directed officials to put safety measures in place as road repair work begins. The action comes after NDTV highlighted the dangerous state of Bengaluru's roads and questioned why key stretches remain in such poor condition.
3: इतनी परेशानी होती है कि कहीं कभी भी जाने के लिए 1.5 घंटे कम से कम लगता है, 1.5 से 2 घंटे। अभी मैं फ्लाइट मेरी छूट गई थी एक दिन, मैं इधर से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और ना तो इसका मेंटेनेंस हो रहा है, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत परेशानी है।
4: अभी देखिए सर, आप यहाँ पर पैच वर्क शुरू
3: हो रहा है, पैच वर्क से क्या होगा, हाँ ये तो आपने करा तब जाके हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग बहुत बहुत परेशान हैं। कभी भी हमारा माने कभी ट्रेन छूट जाएगा, कभी वो छूट जाएगा, यहाँ 2 घंटे पहले चलेंगे तब भी प्रॉब्लम हो जाता है।
5: यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि अभी डे बिफोर यस्टरडे बच्चे, स्कूल के बच्चे, मतलब मेरी खुद की बेटी 2 आवर्स सिर्फ ट्रैफिक में फंसी हुई थी और उसका एग्ज़ाम भी था उस दिन, तो वो उस पैनिक में उसने उसका एग्ज़ाम भी उतना अच्छा हुआ नहीं मेरे ख्याल से। और मैं खुद मैं मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट था और मुझे इतना फीवरिश था, मेरे को पहुँचने के लिए हॉस्पिटल मुझे 2 घंटे लग गए सिर्फ जस्ट शोभा ड्रीम एकर्स से यहाँ पे, हार्डली 5 से 6 किलोमीटर के लिए। तो मतलब बहुत टेरिबल कंडीशन है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है।
4: बट हमने बताया उसके बाद जो है ये काम शुरू हुआ है, तो किस तरीके से आपको क्या लगता है कि हम जब बताते हैं, जब मीडिया बताती है तभी दरअसल
5: आज वही जब जब जब आप लोग कुछ इस पे लाइट डालते हैं तभी कुछ होता है, नहीं तो फिर ये कुछ नहीं करते यहाँ के जो भी है लोकल MLA।
0: A day after NDTV showed the deplorable conditions of Bengaluru's Vartur Gunjur stretches. In fact, right there you have now an impact that's seen on the ground. Right after NDTV reported about how that the traffic congestions are often seen in these stretches and, you know, the commuters facing various difficulties, not just the commuters, in fact also the school children's as well. And there you see now the civic body has swung into an action and the pothole filling work has began in these stretches. So that's the impact that the NDTV has made it on ground. In fact, now these just

0: एनडी टीवी नेटवर्क।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: And India's Oscar race begins as acclaimed Marathi thriller Kondal is officially selected as the country's entry for the 99th Academy Awards.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
1: राहुल गांधी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का जिस तरह अपमान किया, यह छिछोरापन है, राजनीतिक दिवालियापन है, निष्ठा की पराकाष्ठा है, और जिस तरह की हरकत उन्होंने मंच पर की, ये सभ्य समाज और देश की जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है। इससे ज्यादा ज्यादा राजनीतिक दिवालियापन कहिए, छिछोरापन ही कहिए, या निष्ठा की पराकाष्ठा कहिए, दिवंगत माता जी, ठीक है राजनीति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, लेकिन उनके दिवंगत माता जी को जिस तरह मिमिक्री के माध्यम से राहुल गांधी ने अपमान किया है, ये किसी हालत में भी देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
2: The people of the country, in particular the youth, have spoken about what they believe in. They believe in patriotism, they believe in Viksit Bharat 2047, and you saw what happened in their election results in Dushu or Chandigarh or Mangaluru. Rahul Gandhi's act represents his upbringing, it represents the behavior of a cheap troll, and it also tells you why the Congress party is sitting in opposition. Rahul Gandhi has lost his mental semblance, and he is now positioned himself not as a leader of opposition, but the leader of trolls.
3: Right, those are the reactions coming about from the BJP as far as that event of Rahul Gandhi in Indore, where it has triggered a lot of reaction coming out. Now, let's just switch tracks and get you the results. And it's the ABBP that swept the elections when it comes to the Delhi University Student Union polls, winning 3 of the 4 key positions. The BJP has mocked Rahul Gandhi's campaign, while the Congress alleges irregularities in the process of the election. ABBP has swept 3 of the 4 key posts in the Delhi University Students Union polls, and Yash the Boss has been elected president. We also have Riya Chavari as the secretary and Lakshay Raj Singh as the joint secretary, while independent candidate Dipanshu Shokin has won the post of the VP, the vice president. The BJP takes aim at the Congress after the results, and the BJP says that Rahul Gandhi's Jhoot Ka Goonj has been demolished. The Congress is alleging that the significant amount of counting irregularities as far as these elections are concerned, saying narrow margins could have change the outcome. Student groups are protesting outside the DU over alleged irregularities, and this is after the results of the police detaining one protester. In Indore, Rahul Gandhi addressed Chhatron Ki Goonj, targeting the education system and also the Prime Minister on stage.
4: Aaj Dusu ke parinam aaye hain. ABBP ne 4 mein se 3 seaton par shandar jeet hasil ki hai. Aapko bata dein ki Delhi mein ABBP ki jo shuruaat thi, jo beej boya tha, वो जेपी नड्डा जी ने बोला था, हमारे साथ हैं नड्डा जी, आज की जीत पर आप क्या कहेंगे?
5: सबसे पहले तो बीज तो विद्यार्थी परिषद का मेरे से पहले बहुत बो दिया गया था, लेकिन हाँ राष्ट्रवादी ताकतें आगे बढ़ी हैं और उसमें मुझे भी लंबे समय तक काम करने का मौका मिला है, दिल्ली में भी काम करने का एबीपी में मौका मिला है, लगभग 4.5 साल काम किया है। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने शानदार जीत दर्ज कराई है, ये राष्ट्रवादी ताकत।
4: एक तरफ छात्रों की गूंज राहुल गांधी कर रहे हैं और एक यहाँ पर परिणाम है,
5: वहाँ की गूंज तो सुनाई ही नहीं, लेकिन ये धमाका सबने सुना।
6: मैंने अभी सुना है कि NSUI के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ काउंटिंग में और सेंटर्स में भी बहुत धांधली हुई है, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटे मार्जिन जो हैं बाकी 2-3 सीट पे, उसमें इसका बड़ा असर हो सकता है। दूसरा, कैंपेनिंग में भी बहुत दिक्कत हुई, हमारे लोगों को हर जगह जाने नहीं दिया गया, रोका गया, तो उस कारण से हो सकता है कि जो छोटे छोटे मार्जिन की जो 2-3 सीटों पर हम लोग हारे हैं, ये जीत में भी तब्दील हो सकते थे।
7: दिल्ली यूनिवर्सिटी में ABBP का इतना प्रचंड जीत ये दिखाता है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी ये छात्रों का गूंज के नाम से जो घूमता है, वो वैसे तो ये झूठ का गूंज है, क्योंकि युवाओं ने बोल दिया है। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में इतना भारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत दिलाना, मैं ABBP के सारा कैंडिडेट्स जितने जीते हैं शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं।
8: छात्रों की गूंज फॉल्स राजनीतिक नैरेटिव और नारेबाजी में नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में सुनाई देती है, और आज जो डूसू इलेक्शंस के परिणाम आए हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस देश के युवा ने, इस देश के छात्रों ने राष्ट्रवादी विचारधारा को चुनकर एबीवीपी के पक्ष में वोट दिया है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों को चुना है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह चार में से तीन पोस्ट पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी छात्रों ने संभालने के लिए कहा है, उनका चयन करा है। ये आपको ये भी परिलक्षित करता है कि इस देश के युवा ने कांग्रेस पार्टी को सिरे से नकारा है। एनएसयूआई इस चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई, यानी इस देश के युवा ने कांग्रेस पार्टी की नकारात्मक राजनीति को नकारा है और उनकी विभाजनकारी बातों को अस्वीकार करा है।
3: Pastri Suraj there speaking on the matter. Now switching tracks to the latest escalation. As far as the West Asia war is concerned, Iran-backed Houthi militants in Yemen have carried out drone and ballistic missile attacks on the capital of Saudi Arabia. We're talking about Riyadh as well as also on energy sites on the country's Red Sea coast. Saudi Arabian authorities have claimed to have intercepted and destroyed a ballistic missile fired at Riyadh on Saturday without confirming any further strikes or casualties. There was also a column of black smoke that was seen rising from fuel tanks near the international airport in Riyadh, where flights were disrupted temporarily. And following this escalation, the United States has urged Americans in the Middle East to exercise vigilance and prepare for potential flight cancellations and other travel disruptions as well.
9: إطار الرد على محاولات العدو السعودي المجرم باستهداف العاصمة صنعاء بالطرق والأساليب الداعشية من خلال محاولة التفجيرات التي تستهدف المدنيين بدون تمييز أو استثناء. وعليه فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
3: And it's in the last 72 hours that the situation in West Asia has escalated on a new frontier. The Houthi offensive in Yemen's Red Sea has now threatened another critical maritime sea route. And we're talking about the Strait of Bab al-Mandab. What now, in fact, what does this really come across as far as India and the world is concerned? What does it really mean for us back home here in India? Here is our special report with my colleague, Padmaja Joshi.
10: For years, the Houthis have targeted ships passing through the Red Sea. But this past week, they stopped these sporadic attacks from Yemen coast and started taking control of the strategic sea route. In the last 4 days, Yemen's Iran-backed Houthi forces have swept down the entire Red Sea coastline. First, they took the strategic port of Mocha on the 10th of September. This is one of the world's most critical maritime choke points, which sits just 80 kilometers from the Bab al-Mandab Strait, a narrow 29-kilometer water gateway that connects the Red Sea to the Indian Ocean. Next day, the Houthis captured Perim Island, the ultimate gatekeeper of the Red Sea, sitting directly in the middle of the narrow Bab al-Mandab Strait, splitting the water into two channels. And just 2 days ago, the Houthis captured the Greater and Lesser Hanish that acted as a natural shield for any ship moving toward the Suez Canal. The Houthi escalation crossed a red line after Saudi Arabian air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone south of the Islamic holy city of Mecca. While the Houthis are denying this attack, the OIC, or the Organization of Islamic Cooperation, has strongly condemned the event, calling it a heinous transgression. The result? Houthi forces are now positioned barely 20 kilometers from the coast of Africa. For all practical purposes, they control one of the most important choke points in the global economy. And the market has already answered the question of how serious these developments are. Brent crude oil futures have touched around $108.35 per barrel, its highest level since May. To understand why a strip of water barely 30 kilometers wide can move oil markets, you need to see where it sits. Bab al-Mandab, Arabic for Gate of Tears, is the funnel between the Arabian Peninsula and the Horn of Africa. Every ship moving between the Indian Ocean and the Suez Canal has to pass through it. There is no other short way. The alternative is sailing all the way around the southern tip of Africa, adding roughly 2 weeks and thousands of nautical miles to a voyage and over 2 to

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: और प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: यार लोन भूल गया मैरी। सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
3: There's nothing small about it.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्द्र मसाला।
4: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
5: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
6: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
7: Gold rush on the field.
8: Go for glory, only on NDTV.
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
10: 5 आवर्स टू गो फॉर ऑल ऑफ डीकेएस ड्रीम्स टू कम ट्रू। आई एम गोना ट्राई एंड गेट मोर इनटू द क्राउड्स। हियर आर द पिक्चर्स। सिद्धरमैया, एनडीटीवी स्टैंड्स कंप्लीटली एंगेज्ड विद कर्नाटका।
11: हाई रेट चेक द ऑडियो, हाई रेट चेक द ऑडियो।
10: लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट।
12: ब्रेकिंग स्टोरी, वी आर जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट।
10: वी गॉट अ पिक्चर ऑफ द लेटर। What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
13: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
10: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
14: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
13: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
10: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
9: मीठा या नमकीन,

0: Rahul Gandhi's MP event stokes a row. Comedian mimics Prime Minister Modi. Rahul laughs off. Comedian's mom mimicry has draws the BJP ire. BJP has called out an insult to the Prime Minister's late mother. Killer crash in Mumbai. Three youths have been killed. One was critical after speeding BMW crashes on Mumbai's coastal road, plunges off the bridge. The investigation is currently underway. The probe is widening in IIT Bombay suicide case. Professor was booked for abetment to suicide. The professor was accused of intentional caste-based insult. India's medal tally rises to two as Elavanil clinches a second silver medal for the country at the Asian Games. More awaited. We're starting this edition with a big story that's coming in from the state of Maharashtra, where three people were killed and one was critically injured after a BMW crashed on Mumbai's coastal road in the early hours of Sunday, that is today. Now, the black BMW was travelling from Marine Drive towards Haji Ali when it reportedly crashed into a boundary wall before plunging off the bridge, as you see on your screens. Now, the impact left the luxury car severely damaged, with its front end completely crushed and the windshield and roof badly wrecked as well. There were four people who were rushed to the Nair Hospital following the crash. There were three who were declared brought dead. While a 20-year-old man remains critically injured, the wrecked BMW was later lifted and removed from the crash site using a crane. The police is now investigating the circumstances surrounding the crash, including the reported speeding that preceded the accident.
1: एक सुबह 5:20 में कॉल था कि एक ब्लैक रंग की BMW कार, उसका नंबर है DD01 C6302. ये गाड़ी मरीन ड्राइव की तरफ से हजेली की उधर नॉर्थ बाउंड पे जा रही थी, तो कोस्टल रोड से नीचे गिर गई और उसमें चार लोग थे. एक है आदित्य ओसवाल, वो जख्मी है, उस पर उपचार चल रहे नायर हॉस्पिटल में. और तीन लोगों की डेथ हो गई, तहरीर शेख, आदित्य जकासनिया, शनय गजर. और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है.
2: A major accident was reported on the coastal road in the early hours today morning, and a BMW, it was overspeeding and it resulted into it crashing down and falling off from this bridge where we are present. This is the coastal road, and below you see the condition of the BMW car. Four people were into the car, and because of overspeeding, three of them, they lost their lives, whereas one is currently injured and is admitted to Nair Hospital. According to the information from the Nair Hospital CMO, three injured persons were declared brought dead. The deceased have been identified as 21-year-old Shanai Gajjal and 17-year-old Dhirya Seth. The identity of the third deceased, a 25-year-old man, is yet to be confirmed. A 20-year-old male is currently admitted to the trauma ward and is reported to be in critical condition. The police is present at the spot, and like you see, all of the forensic teams are too present trying to inquire about the evidence to understand what exactly led to this incident happening. If you see the BMW car, it was flying into onto this road when it oversped, and it resulted into it falling from this very road off the coastal road. The forensic team is currently collecting evidence from the car to understand and estimate the entire condition behind this major accident taking place. And if you see, four people were present, and because of overspeeding, it led to this major accident taking place on the coastal road.
0: Shifting our focus to other stories that we are tracking, a mimicry act at Rahul Gandhi's Chhatro Ki Goonj event in Indore has triggered a fresh BJP and Congress face-off. Now, during the event, a young man mimicked Prime Minister Narendra Modi's late mother in front of Rahul Gandhi along with the Prime Minister himself. The mimicry has now triggered a political controversy with allegations that the act also insulted the Prime Minister's late mother. The BJP has now trained its guns on Rahul Gandhi, accusing him and the Congress party of crossing the line by allegedly mocking the Prime Minister and an elderly woman referenced in the political remark. Senior BJP leaders, including Kiran Rijiju, Prahlad Joshi and others, have taken dig at Rahul Gandhi. The Congress, meanwhile, has hit back at the BJP over the mimicry row at Rahul Gandhi's event. The Congress MP, Pramod Tiwari, says that there was no mention of the Prime Minister Modi's late mother and questions the basis of allegations. Lots of political reactions coming in on that top story.
3: और बताइए और बताइए थोड़ा माँ को कुर्सी दो माँ माँ और बताइए और बताइए थोड़ा माँ को कुर्सी दो माँ माँ
4: मिस्टर राहुल गांधी वॉज सीन शेयरिंग अ स्टेज यस्टरडे विद चीप वल्गर ट्रोल्स हु deliberately insulted our Nari Shakti and mocked a frail elderly Mataji, labeling her as a setting. No decent right-thinking person would have found these foul-mouthed third-rate antics amusing, but Rahul Gandhi was seen laughing loud on the stage he was sharing with them. Such uncouth culture endorsed by Rahul Gandhi is the reason why Rahul Gandhi and the Congress have failed to resonate with the youth and they have failed to connect with the youth, as pointed out by even their own Congress colleague, Mr. Shashi Tharoor. Rahul Gandhi's politics of bitter hate.
5: Neta Pratipaksh Rahul Gandhi ji ne apni jhoot ki gunj ka karyakram kiya. और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता है, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है। आज ही हमारे द्वारा बच्चों को जब स्कूलों की बात आती है तो सांदीपनी विद्यालय के बलबूते पर राज्य के अंदर ड्रॉप आउट जीरो अगर हुआ है तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
6: राहुल गांधी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का जिस तरह अपमान किया, यह छिछोरापन है, राजनीतिक दिवालियापन है, निष्ठा की पराकाष्ठा है। जिस तरह की हरकत उन्होंने मंच पर की, यह सभ्य समाज और देश की जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है। इससे ज्यादा राजनीतिक दिवालियापन कहिए, छिछोरापन ही कहिए या निष्ठा की पराकाष्ठा कहिए, दिवंगत माता जी, ठीक है राजनीति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, लेकिन उनके दिवंगत माता जी को जिस तरह मिमिक्री के माध्यम से राहुल गांधी ने अपमान किया है, ये किसी हालत में भी देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है।
7: जैसे जैसे चिराग बुझता है ना, दिमाग की जो बोलने की शक्ति होती क्षीण हो जाती। एक एक सेकंड में राहुल गांधी के एक एक शब्द चुनौती देता हूँ। मैंने दोबारा देख लिया, तिबारा देख लिया, प्रधानमंत्री जी की माँ का तो जिक्र ही कहीं नहीं आया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि राहुल गांधी एक सुसंस्कृत पूरी तरीके से संवेदनशील नेता हैं जो भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हैं। और अगर बात चली तो फिर मुझे कहना पड़ेगा, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने किसी और की नहीं, राहुल गांधी का माँ का अपमान किया था। जो शब्द प्रयोग किए वो मैं कर भी नहीं सकता। क्या कहा था उन्होंने शशि थरूर की 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या कहा था रेणुका चौधरी जी के लिए राज्यसभा में पार्लियामेंट के फ्लोर पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो असिस्ट हो, जिनकी भाषा संसदीय हो, जिनको बोलने का ज्ञान न हो, दूसरों को उपदेश न दें।
8: भारतीय जनता पार्टी को उसी की दी हुई दवाई का स्वाद चटाना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता बिलबिला रहे हैं, ये वही नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल का भद्दा मजाक उड़ाते हैं, राहुल गांधी क्या, उनके पिता क्या, उनकी दादी क्या, उनके परनाना तक को जिन्होंने नहीं छोड़ा, संसद में भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की गई। आज वो पार्टी कहती है कि साहब लिहाज रखना चाहिए।

0: वेलकम, सत श्री अकाल। मैं हूं तन्वी मल्हारा एंड दिस इज वंदे भारतम। 24 जून 2026 को शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा ग्रास रूट इनोवेशन मूवमेंट और आज उस मूवमेंट का आखिरी पड़ाव है। आज चुने जाएंगे टॉप 5 विनर्स एंड स्पेशल कैटेगरी विनर्स। देखिए, यहाँ तक की जर्नी बहुत स्पेशल थी, यहाँ तक की जर्नी ओवरवेलमिंग थी, एक्साइटिंग थी, लेकिन हमने जाना कि हर इनोवेटर में है जज्बा कि यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ कर दिखाना है। देखिए, फाउंडर की जर्नी आसान नहीं होती। फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग रिक्वायर्स करेज, पैशन एंड डिटर्मिनेशन। कुछ को मिले वंदे विंग्स, कुछ को मिला शुभारंभ, लेकिन एक चीज जो मुझे मिली है वो है ये कि यार, रेड कार्पेट अगर सेट हो गया तो मुझे अब ब्रांड एम्बेसडर से ब्रांड फाउंडर की जर्नी आज से शुरू करनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, नाउ दैट द रेड कार्पेट इज रेडी, आर वी रेडी टू वेलकम ऑल आवर ब्रिलियंट इनोवेटर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया? आई थिंक वी आर। इज दिस योर फर्स्ट टाइम वॉकिंग द कार्पेट?
1: Yes.
2: Yes.
1: Yes. Yes.
2: ऐसा पर देखा नहीं था, मतलब ड्रीम कम ट्रू टाइप है। Yes.
0: You are here for the grand finale. कैसा फील हो रहा है आज? Can't control his reactions, emotions.
3: Extremely excited. Very proud that we could reach here. Super happy.
0: The founders from Chill Ho, so we are very chill right now, are we?
4: Yes, we are chill.
5: There is a very high. We are feeling very good. थोड़ा बहुत celebrity का feel already आने लग गया
0: है।
5: सब अच्छा जा रहा है अभी तक। Hopefully हम जीत जाएं।
6: Feel ऐसा आ रहा है कि जीतने वाले हैं या जीत चुके हैं।
7: जीत तो ये platform से ही मिल गई है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है।
0: Wow. कहते हैं कोई भी सफर की खूबसूरती उसके मंजिल में नहीं होती, लेकिन उन कहानियों में होती है जो हमें रास्ते में मिलती है। हमारे वंदे भारतम के सफर में हमारे साथ कोई ऐसे शख्स रहे जिन्होंने हमारे इनोवेटर्स के साथ सिर्फ इनोवेशन की बातें ही नहीं, बल्कि उनके साथ उनकी पर्सनल कहानी भी जानी। और वंदे भारतम के इस सफर में एक दोस्त बनकर उनका हौसला भी बढ़ाया। तो आइए स्वागत करते हैं इस रेड कार्पेट पे। प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग द होस्ट, द एक्टर, द हार्टथ्रॉब and our brand ambassador, Mr. Rajiv Khandelwal. Hello.
1: Hi, Tanvi.
0: Look at you. You look so sharp.
1: You can't see my hand. It's the grand finale.
0: Mesmerized by your face.
1: That's
0: your hand.
1: That's a smart one.
0: राजीव, मुझे बताइए कि आपने इतने सारे दिन इतने इनोवेटर्स से बात करी, नॉट जस्ट एज अ होस्ट बट आल्सो एज अ फ्रेंड, ऐसा कोई मोमेंट था जब आपको लगा यार दिस इज गोना स्टे विद मी फॉरएवर?
1: तन्वी, एक मोमेंट नहीं था, मोमेंट्स के बाद मोमेंट्स थे, इनोवेटर्स के बाद इनोवेटर्स थे। आई थिंक अगर मुझसे पूछोगे कि किसी एक को याद करो तो बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज़ आई थिंक एवरीडे देयर वर इनोवेटर्स who touched our hearts, who inspired us, who also encouraged us to be like them.
0: और कैसा लग रहा है आप grand finale host करने वाले हो आज?
1: I'm excited, I'm nervous. It's

initiative by Mr. Gautam Adani. Thank you so much. और मैं एक बार फिर आपका दोस्त राजीव खंडेलवाल सैल्यूट करता हूँ हमारे इनोवेटर्स की सोच, उनके आइडियाज और उनके विजन को. 26,000 रजिस्ट्रेशन के बाद आज इस मंच पर हमसे मिलने आएंगे हमारे फाइनल 5 इनोवेटर. आज इस मंच पर वो भी आएंगे जो वंदे भारतम मंच की नींव. इनकी सोच से हम सब जुड़े और जिनके सफर से हम सब प्रेरित हुए. कुछ लोग अकेले बिजनेस खड़ा करते हैं, कुछ लोग उस बिजनेस को साम्राज्य बनाते हैं, पर उनमें से कोई एक अपने साथ साथ करोड़ों लोगों की जिंदगी में रोशनी, मुस्कुराहट और खुशियां लेकर आता है. द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डर ऑफ इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन, प्लीज वेलकम द विजनरी बिहाइंड द मूवमेंट वंदे भारतम, श्री गौतम अदानी जी.

0: कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनसे ना हाथ नहीं मिला जाता, उनके सामने सिर्फ अपना शीश झुकाया जाता है। आप उनमें से एक हैं सर। ये आपने सपना देखा था, ये आप ही की सोच थी, आज रियलिटी में बदल गई है।
1: नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना ये बड़ा सक्सेसफुल होगा। एवरीवन वर्क्स ऑन दिस वंदे भारतम थिंग्स इज आउटस्टैंडिंग।
0: आपकी सोच जुड़ी थी सर इसके साथ में। आपकी वो जो एक लाइन है जो आप हमेशा कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, वो सोच ने आई थिंक बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस दिया। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सोच आपके दिमाग में आई कैसे?
1: देश में काफी हुनर है, लोगों को एक मौका मिलना चाहिए। और ये जब चीज हमने देखा और जब स्टार्टअप इंडिया से लेके सब ये इनोवेशन जब हो रहा था, तब मेरे को लगा कि इसको और बढ़ावा देना चाहिए। और उसमें से ये सोच निकली कि वंदे भारतम के नाम पे ये इनिशिएटिव चालू करना चाहिए और उसमें अदानी ग्रुप को उसमें हेल्प करके सबको जो निखरा हुआ जो व्यक्तित्व है लोगों का वो कैसे बाहर निकालें। बिजनेस का भाग ही है कि आप दूसरे लोगों को भी किस तरह से साथ निभा के उसको आप आगे लेके आ सकते हो।
0: और कमाल की बात ये सर, आप इतना बिजी रहते हैं उसके बावजूद भी आपने कैसी चीज़ सोची जो कि आपके बिजनेस वाली दुनिया में नहीं है, जो एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ अबाउट एम्पावरिंग द एंटायर नेशन। एक चीज़ जो हमारे फाउंडर्स के बहुत काम आएगी कि आपने सपने देखे, आपने सपने पूरे किए और अब आप बहुत लोगों के सपने पूरा कर रहे हैं। इस सफ़र में जो सपनों से सपनों को पूरा करने का सफ़र होता है, उसमें कोई एक चीज़ जो लोगों को नहीं भूलनी चाहिए?
1: मेन है मेहनत। आप कोई नियत से मेहनत करेगा वो आदमी कभी ना कभी आगे पहुँचेगा। तो मेरी तो सबको गुजारिश है कि आप मेहनत के रास्ते से कमी नहीं करो और उसमें आगे बढ़ते।
0: थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। प्लीज अपनी किसी भी लेगेसी की सबसे खूबसूरत चीज ये होती है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो ना सिर्फ उस लेगेसी को संभाले बल्कि अपनी सोच और अपनी विजन से उस लेगेसी को आगे लेकर जाए। वंदे भारतम के इस मंच पर हमें मौका मिला कि अदानी परिवार की जो नेक्स्ट जनरेशन है हम उनसे मिले, उनकी सोच और उनकी विजन को समझें। और आज एक बार फिर हम मिलते हैं अदानी परिवार की यंग जनरेशन से जो भारत के भविष्य को ना एक अलग पर्सपेक्टिव से देखती है। प्रणव, एक चीज इस मंच पर आने के बाद में जो आपके साथ रह गई,
2: ऑल द पार्टिसिपेंट्स, वन थिंग दैट आई सॉ इज द टेनेसिटी रियली टू स्टिक ऑन टू देयर आइडियाज। उसमें जो एक हमने देखी थी कंपनी, वो 8th स्टैंडर्ड, इनफैक्ट 7th स्टैंडर्ड से उसका ये ड्रीम था। दे आर ऑलरेडी क्रॉस्ड कॉलेज एंड दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट।
3: हम बिहार बाल भवन किलकारी, हर स्टेट में एक बाल भवन होता है, वहाँ हम दोनों साइंस विधा में सीखते थे प्रोफेशनल स्टेम। तो हमें वहाँ प्रोजेक्ट दिया गया कि बिहार से हमें, और ये समस्या बहुत लोकल है, इस पर आप लोग कुछ असेस करिए कि टेक्नोलॉजीज क्यों फेल होती है। तो तब से हमने साइंस कांग्रेस में पार्टिसिपेट किया, हमें A+ ग्रेड मिला और बिहार सरकार ने हमें सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को।
2: तो टेनेसिटी जो एक चीज़ है, एक चीज़ जो पकड़ के रखी है उन्होंने, दैट इज समथिंग दैट आई सॉ कॉमन अमंग एवरीवन ओवर हियर।
0: करण, आपने इतने लोगों को वंदे विंग्स दिए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन यहां से? How do you see it turning out?
4: I am extremely positive that a lot of them, if they keep doing what they're doing and they keep on with their tenacity, as what Pranav

0: set, I think they will all be successful.
1: Thank you so much. Jeet, something which happened here which was unexpected.
2: You know, everyone was driven by a purpose. So, unhone jo bhi startup chalu kiya hai, jo bhi idea, incubate kar rahe hai, it was all driven by some sense of purpose that they personally had. And I think that touched me a lot, that, you know, I could connect with that. Yeah, it was great to see everyone.
1: Fabulous. Thank you so much. And Srishti, how was your experience?
3: It was so humbling and so grounding to see the sheer persistence and grit jo hamare India ki yuva mein hai. मुझे सबसे ज़्यादा बात अच्छी ये लगी कि मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स दैट आई मेट दे डिडंट स्टार्ट विद स्प्रेडशीट्स. उन्होंने अपने काफ़ी पर्सनल प्रॉब्लम को इन्वर्ट देख के उसमें ट्रू ह्यूमन एम्पथी, यू नो देयर वर फाउंडर्स दैट वर वर्किंग ऑन रेयर डिजीजेस.
4: मैंने इतना जेनेटिक्स रेयर डिजीजेस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है.
3: There were founders, assistive technology, and things जो हम daily life में उतना नहीं सोचते हैं, पर उन्होंने एक problem को पकड़ा.
5: One product, one individual is a solution in the market. I get it, but our solution is beyond market. It's a social impact.
3: और empathy के साथ, how do they layer it with economics? It was very, very heartening and very, very humbling to see.
1: Alright, so Gautam sir की जर्नी के बारे में हम सब जानते हैं, हमने सब इनकी सक्सेस स्टोरी देखी है. But there are very few people, I think, who know or who have seen the struggle behind the journey. What makes him who he is today? So let's have a quick look at his magnificent journey, I would say.
6: जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी. दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या, मझधार क्या. हरिवंश राय बच्चन जी की कही ये बात गौतम अदाणी जी की पहचान है. एक मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे गौतम अदाणी जी के पास था तो सिर्फ उनके माता पिता का आशीर्वाद.
7: मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है.
6: और एक सपना, और उस सपने पर अटल विश्वास. कॉलेज की किताबों से ज्यादा जिंदगी के तजुर्बों से सीखा. 16 साल की उम्र में अहमदाबाद की गलियों से सीधा मुंबई की भीड़ में आ पहुंचे नौकरी की तलाश में. इन्होंने हर ठोकर को आने वाली जीत की सीढ़ी में बदल दिया. एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस को भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम्स में बदल दिया. पोर्ट्स, पावर, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल, डिफेंस, रिन्यूएबल्स, ये सिर्फ बिजनेसेस नहीं है, ये भारत के भविष्य का बुनियादी ढांचा है. गौतम अदाणी जी का हमेशा से विश्वास रहा है कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी उसके लोग हैं. इसी विश्वास को अपना मकसद बनाकर इन्होंने दी उड़ान हमारे सैकड़ों युवाओं और उनके सपनों को, दिया एक बेहतर जिंदगी का भरोसा, भारत के गांव में बसे अनेक परिवारों को दिया रोजगार, दिया भारत के हजारों बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य का वरदान. सपने अकेले देखे जा सकते हैं, पर उन्हें साकार करने के लिए किसी अपने के साथ विश्वास और हौसले की जरूरत होती है. गौतम अदाणी जी के सफर में प्रीति अदाणी सिर्फ उनकी जीवन साथी नहीं है, एक ऐसी मजबूत ताकत भी है जिन्होंने गौतम अदाणी जी को कभी रुकने नहीं दिया. गौतम अदाणी जी की कहानी सिर्फ एक उद्योगपति की कहानी नहीं, भारत के सुनहरे भविष्य का सफर है. असली लेगेसी कंपनी के नाम से नहीं, राष्ट्र निर्माण से लिखी जाती है. वंदे भारतम का विजन जो उन्होंने 24 जून को लॉन्च किया था, आज देश के कोने कोने से हजारों इनोवेटर्स को उड़ान दे रहा है. वंदे भारतम आज 26,000 से भी ज्यादा लोगों के परिवार का रूप ले चुका है, और उनका यही परिवार उनसे कुछ कहना चाहता है.
8: मेरे लिए वंदे भारतम एक एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है.
9: वंदे भारतम एक ऐसा मंच है जहाँ अनसुनी आइडियाज को भी सुना जाता है.
10: एक ऐसा बिलीव कि वोकल फॉर द ग्लोकल, ग्लोबल एंड लोकल दोनों साथ.
11: ग्रासरूट इनोवेशन का एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का सारे इनोवेटर के लिए.
12: जीवन का टर्निंग पॉइंट आया है वंदे भारतम से. हमारा जैसा स्टार्टअप को बहुत ही खुशी हुआ, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है, तो जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है।
13: सर, यू आर एन इंस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ फ्यूजिंग कैपिटलिज्म विद नेशन बिल्डिंग।
3: इफ आई लुक अप टू समवन, दैट विल बी हिम। मैं उनके जैसा बनना चाहूंगी।
14: अदानी सर हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट ऑफ द पीपल हु आर लुकिंग एट बिजनेस।
9: इन्होंने हमें समझा कि हाँ, हम आइडियाज इम्पॉर्टेंट होते हैं, आइडियाज मैटर करते हैं, चाहे कोई से भी एज हो, चाहे कुछ भी हो, आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए।
8: और जो लाइन है ना कि इफ आई कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट, इट्स लाइक अ ग्रेटेस्ट टेक अवे।
13: एंड द मैसेज फॉर मिस्टर गौतम अडानी जी इज दैट थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी।
15: वेरी स्पेशल थैंक्स टू गौतम अडानी जी टू मेकिंग दिस पॉसिबल।
9: आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया।
1: थैंक यू वंदे भारतम,
15: थैंक यू फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
3: थैंक यू।

0: मैम, मैं ये भी देख रहा था तो आई एक्चुअली रियलाइज दैट कि हाउ मच यू आर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर व्हाट यू डू टू मेक गौतम अदानी जी हु ही इज. सो दिस वन इज फॉर यू. व्हाट अ जर्नी दिस वाज. ये सिर्फ जर्नी सिर्फ फाउंडर्स की नहीं थी. आई थिंक इवन द मेंटर्स जो यहाँ पर आए थे, आई थिंक दे ऑल्सो हैड अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस. कुछ लोग यहाँ पर हैं जैसे विजय जी, यहाँ पर बैठे हैं, इन्होंने पूरे शो पर गाना गाया. सर आइए यहाँ पर. आपने इतना अच्छा गाना बनाया था हमारे शो के लिए, तो वही सुनना चाहेंगे हम.
1: तो ये गाना जल्दी से लिखा गया था 24 घंटे के अंदर में, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि सर लिखा भी गया, जल्दी से रिकॉर्ड भी हुआ, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा. मैं जरूर त्रुटियाँ जरूर रहेगी तो माफ़ करना उसके लिए. मैं इसको आपको रिसाइट कर देता हूँ. ऐसा था कि सपनों को पंख लगाने का आया है ये त्यौहार, हर नए प्रयास से ही होगा भारत का नव संचार.

0: विजय सर, आप यहाँ पर आई गए तो बता दीजिए कैसा था आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर?
1: नहीं, मैं ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा अनुभव मेरे को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रास रूट से जुड़े हुए लोगों से मिलने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला, और उनको जो ये मंच मिला है ये बताता है कि हमारा आने वाला भारत कैसा होगा। अगर इनके हैंड होल्डिंग की जाए और इनको इनको अगर सहयोग किया जाए तो भारत उन्नति के पथ पर जरूर आगे बढ़ेगा।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए शामिल होते हैं वंदे भारतम की इस विजय यात्रा में। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वंदे भारतम फिनाले एपिसोड, दिस इज वंदे भारतम अवार्ड्स नाइट। मेंटोर्स के स्कोर्स और एआई टेक्निक्स के जरिए हमें मिले हैं हमारे स्पेशल कैटेगरी विनर्स और टॉप 5 विनर्स। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन आप जानते हैं यहाँ जो बाहर हमारे इनोवेटर्स बैठे हैं, जो फाउंडर्स बैठे हैं, दे आर ऑल्सो स्वेटिंग, उनको बहुत नर्वस हैं बाहर की किसका नाम लिया जाएगा। तो एक बार सर देखते हैं झलक बाहर हो क्या रहा है। तन्वी, आर यू देयर?
2: यस राजीव, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यहाँ का जो तापमान है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हमने हमारे होल्डिंग एरिया में दो वर्ड्स बैन कर दिए हैं, नर्वसनेस और एक्साइटमेंट, क्योंकि हम उससे बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। व्हाट वी आर फीलिंग इज इंस्ट्रूमेंटल, इट्स मॉन्यूमेंटल, बिकॉज वी नो वी आर री राइटिंग हिस्ट्री, वी नो कि हम इतिहास क्रिएट कर रहे हैं। यस राइट,
0: किसी को वहाँ पर आइडिया है कि कौन आज इस मंच पर आने वाला है?
2: यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है कौन आने वाला है, लेकिन यहाँ पर हर इंसान एक को बोल रहा है कि तुम भी जीत जाओगे, कोई नहीं, मेरी जीत तुम्हारी जीत में है। So it's more like a family than anything else.
0: मेरी तरफ से उन सबको बोल दीजिएगा कि वो सब जी चुके हैं। All of you, all the best.
2: राजीव, हमें एक चीज करनी है।
0: हाँ।
2: हमें ये कहना है, अगर आपकी आइडिया में है दम तो भारत कहेगा
0: वंदे। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं स्पेशल कैटेगरी अवार्ड से। किसी ने अपनी तकलीफ को सॉल्यूशन बनाया, किसी ने अपने गांव की जरूरत को अपना मिशन, कोई टेक्नोलॉजी से बदलाव लेकर आया, तो किसी ने सिर्फ अपने हौसले से वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। और इन्हीं इंस्पायरिंग जर्नीज को सलाम करने के लिए आज हम कुछ स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे विनर्स को मिलेगी वंदे भारतम की ट्रॉफी।

0: और 11 लाख का प्राइज मनी। नाम अनाउंस करने से पहले गौतम जी, मैं आपको यहाँ पर बुलाना चाहूंगा सर। ओके, तो हमारी जो पहली कैटेगरी है रूरल चेंज मेकर अवार्ड, उनके लिए जिन्होंने भारत के उन हिस्सों में बदलाव की रोशनी पहुंचाई जहां अक्सर सॉल्यूशंस सबसे आखिर में पहुंचते हैं। एंड द अवार्ड गोज टू फ्रंटियर मार्केट मिस अजायता शाह।
1: अजायता शाह ये है फ्रंटियर मार्केट्स की फाउंडर और सीईओ। विदेश में रहती थी पर जब भी भारत आती इन्हें लगता अपने देश के लिए कुछ करना है। इस तरह इन्होंने शुरू किया फ्रंटियर मार्केट्स कंसल्टिंग।
2: भारत जो है वो देश की आवाज है और कहीं ना कहीं महिला जो है सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कमाई जल्दी से करना चाहते हैं, तभी वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना। हम लोग ने एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पे लेके आ चुके हैं।

0: थैंक यू।
1: एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि दिस वॉज फॉर द सहेलीज। अब ये लग रहा है कि अब पर निकल के आ रहे हैं तो अब हवा में उड़ेंगे और तेजी से जाएंगे।
2: हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है दिव्यांग इनोवेटर अवार्ड। ये उनके लिए जिन्होंने साबित किया कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस कैटेगरी में सिर्फ एक नहीं, दो लोगों को अवार्ड के लिए चुना गया है। तो पहला अवार्ड है इस कैटेगरी में, वो जाता है फ्रीडम व्हील्स के जिग्नेश शाह एंड मनीष शाह।
3: फ्रीडम व्हील्स इसके फाउंडर हैं जिग्नेश शाह। इन्होंने देखा कि दिव्यांगजनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में होती है बड़ी समस्या, तो किया एक इनोवेशन
4: जो दिव्यांगजन को व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही इंडिपेंडेंटली मोबिलिटी देता है, जो टोटली इलेक्ट्रिकल है। हर दिव्यांग की जरूरत के हिसाब से हम ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ताकि उनकी लाइफ ईजी हो जाए।
5: पर्पस मेरा ये है कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए, मेरी 10 साल की जो मेहनत है उसको एक एक मुकाम पे ले जाने के लिए आया हूँ।
6: आई कैन गो आउट ऑफ द वे, मैंने कह चुकी हूँ तुमने हेल्प करीस, मेंटर करीस,

0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: थैंक्स टू वंदे भारतम कि आज हमें हमारे हौसलों को, हमें हमारी मेहनत को सराहा है और हम आगे लोगों दिव्यांग तक पहुंच के ये हमारा जो मिशन है उसको कंप्लीट करेंगे।
2: हमारे इसी कैटेगरी के जो अगले विनर हैं उनका नाम है खेतकी इनोवेशंस के रघु दत्त देगाला एंड धनराज कलूरी।
3: इनसे मिलिए, ये है रघु दत्त, काइटेकी इनोवेशंस के फाउंडर। इन्होंने एक ऐसा इनोवेशन तैयार किया है जो दिव्यांगों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए रेस्ट रूम्स को बना रहा है ज्यादा एक्सेसिबल, सुरक्षित और सम्मानजनक। वंदे भारतम में मेंटोर्स के सामने अपनी पिच रखने के बाद इनके इनोवेशन के लिए खुले मेंटोरशिप, सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स और मार्केट कनेक्शन के द्वार।
4: आई एम टॉकिंग अबाउट 200 फैमिलीज दैट आर इंपैक्टेड विद लेसर केयरगिवर्स। One product, one individual is a solution in the market. I get it. But our solution is beyond market.

0: super happy, super excited. First time, first entry, and we could do something, you know, for our own entire community.
1: We are very glad and happy for this opportunity, and glad that we won this.
2: Our next category is for Sustainable Innovation Award. उन इनोवेटर्स के लिए है जो आज की जरूरत पूरी करते हुए कल की दुनिया का भी ख्याल रख रहे हैं. And the award goes to Sustainable Innovation, X-Leap, Miss
3: Ranu Khade
2: and Hitesh Narula.
4: रानू खाड़े ये है एक्स लीप केयर की फाउंडर. इन्होंने देखा कि सैनिटरी पैड्स को डिस्पोज होने में कई साल लगते हैं, तो इन्होंने बनाया प्लांट बेस्ड मटेरियल लेयर से बना सैनिटरी पैड.
5: अपना देश इंडिया इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिफरेंट मटेरियल्स. हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स को लिया, हमने 5 लेयर्स एब्सोल्युटली प्लांट बेस्ड मटेरियल से बना दिया. दैट मेक्स फ्लोथम डिफरेंट. समथिंग व्हिच इज नेचुरली मेड गोज बैक टू द मदर अर्थ and does not create any plastic pollution.
4: Vande Bharatam mein inke innovation ko mila mentors ka saath.
6: I would like to put 3 crore.
4: 3 crore rupaye ki investment ke saath AstroTalk app par free promotion ka mauka bhi.

0: I've been to other platforms before. The only question which keeps coming is like, how big you are. It was very different here. The question was, how big can you dream? It was a very different experience, tha, beautiful experience. And last but not the least, I would say ke dream big, bold.
1: Yeah.
0: Nothing can stop us.
2: Our last special category is Women Entrepreneur Award. This is for women innovators who not only built business, but also made new routes for themselves and others. And the award goes to... Humble Bee ki Miss Monica Shukla.
3: IIT mein padhai, New York mein naukri aur phir ek din sab chhodna jo koi soch nahi sakta par inhone kiya. Miliye Monica Shukla ji se. Ye hai Humble Bee ki founder.
4: Humble Bee ek honey company nahi hai. Hum ek end to end full stack beekeeping model hai. हम महिलाओं को साइंटिफिक बी कीपिंग ट्रेनिंग दे करके सशक्त करते हैं खोने के लिए कुछ खास है नहीं बस एक मिशन है मेरा सपना है कि जब इंडिया डेवलप्ड नेशन के पाथ पर चले तो इन लाखों महिला बी कीपर्स का नाम शामिल हो
3: वंदे भारतम के मंच से इन्होंने रखा भारत की बी कीपिंग इंडस्ट्री को बदलने का अपना विजन और इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मिले वंदे विंग्स और 5 करोड़ रुपए की फंडिंग का ऑफर भी

0: बट यहाँ आना बहुत इम्पॉर्टेंट था और अभी तक हम लोग ग्रास रूट लेवल पे ब्लाइंडर्स लगा के काम कर रहे थे, किसी को समझ नहीं आता था कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हमारा काम करोड़ों लोगों तक पहुँचे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
1: सर, बहुत से लोग पूछना चाहेंगे कि आप शॉपिंग करते हैं?
2: मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ।
1: अगर हम पूछें कि आपने लास्ट शॉपिंग क्या की थी?
2: मैं मेरे पैंट्स भी और काफ़ी चीज़ें मैं ऑनलाइन ही लेता हूँ। तो होता क्या है कि मैं वहाँ शॉप में जाता हूँ तो काफ़ी लोग मेरे को पकड़ते हैं, इससे मैं ऑनलाइन ही तुम्हें पकड़ता
1: हूँ। ऑलराइट, बारी आ गई है फर्स्ट पोजीशन की। कौन आज वंदे भारतम के फाइनलिस्ट इनोवेटर्स में नंबर वन पोजीशन पर होंगे? So, winner of Vande Bharatam

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आके और
2: मसाला। A generation with questions.
3: The starring and the whole glamorous side of it.
4: As I said, like I can't empathize with it.
2: Unconventional.
5: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
2: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
6: Aspirational.
2: The ideas. The issues.
7: You really are.
2: The young view.
8: Public perception.
2: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
11: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
12: High rate, check the audio.
10: Let's do it.
13: Breaking story, we're jumping straight into it.
10: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
14: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
10: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
15: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
14: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
10: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
9: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
16: द 20th एशियन गेम्स आर ऑफिशियली अंडर वे इन आईटी नागोया इन जापान। फॉर द नेक्स्ट 16 डेज दिस इज वेयर इंडिया स्पोर्टिंग ड्रीम्स विल प्ले आउट।
17: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
18: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
19: Gold rush on the field.
17: Go for glory, only on NDTV.
4: Launch control, 0 to 100.
1: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
5: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
1: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
20: Hello and welcome.
21: Sir, आप ना रोज रोज नहीं मिलेंगे, मुझे आपसे इंटरेक्ट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, बट आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछना चाहता, बस कुछ पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि मैं ही नहीं बहुत से लोग पूछना चाहेंगे कि आप शॉपिंग करते हैं।
22: मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ।
21: आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? आप वो हमारी तरह से अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग करते हैं?
22: काफी तरह।
21: ये आप ही के ब्रांड्स हैं, आप शॉपिंग करते हैं, और अगर मैं पूछूं कि आपने लास्ट शॉपिंग क्या की थी?
22: मैं मेरे पैंट्स भी और काफ़ी चीज़ें मैं ऑनलाइन ही लेता हूँ। होता क्या है कि मैं वहाँ शॉप में जाता हूँ तो काफ़ी लोग मेरे को पकड़ते हैं, इससे मैं ऑनलाइन ही तुम्हें परचेज।
21: अच्छा, आप इतना बिजी रहते हैं, कभी ऐसा हुआ है? ऑफकोर्स आप चेयरमैन हैं पूरे ग्रुप के, घर की चेयरमैन ऑफकोर्स प्रीति मैम है, पर कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी मीटिंग में उन्होंने फोन किया हो कि गौतम कहाँ पे हो तुम यार, खाने पे लेट हो रहा है, आ जाओ घर पे, और आपने वो मीटिंग छोड़ के गए हो आप, यार टाइम हो रहा है मुझे घर पे जाना है?
22: ऐसा बना नहीं है अभी तक।
21: ऐसा नहीं हुआ मैम कभी? कभी नहीं हुआ ऐसा? तो चलिए, समय आ गया है हमारे टॉप 5 विनर अनाउंस करने का। लेकिन उससे पहले देखते हैं बाहर हमारे इनोवेटर्स के साथ क्या चल रहा है। One final time, over to you, Tanvi.
23: देखिए वो घड़ी आ गई है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर माहौल नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है।
21: देख रहा हूँ पीछे में सब के सब टेंटर उसमें, एवरीवन। अब टाइम आ गया है टॉप 5 इनोवेटर्स के नाम को यहाँ पर लेने का। एक्साइटेड गाइस?
24: यस।
21: किसको लगता है कि किसका नाम लिया जाएगा, हाथ खड़े कीजिए। ऑलराइट, लेट्स सी, मालूम पड़ जाएगा अभी अगले कुछ सेकंड्स में। ओके, तो हमारे जो 5 फाइनलिस्ट हैं, उसमें जो 5th पोजीशन पर हैं, उनका नाम है स्पेस फील्ड के पूर्व मसूफ।
0: स्पेस फील्ड्स इसके फाउंडर हैं अपूर्वा मसूख। जब इन्होंने देखा कि रॉकेट्स और मिसाइल्स में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल 10 से 15 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो इरादा किया उसे नई लाइफ देने का। वंदे भारतम के मंच से जब इन्होंने मेंटोर्स के आगे अपना इनोवेशन रखा तो सब हुए इम्प्रेस्ड, और इन्होंने पाया ऑफलाइन असिस्टेंस, वंदे विंग्स और अदानी डिफेंस कोलैबोरेशन।

0: जिन्हें मिलेंगे 15 लाख रुपए का कैश प्राइज। अपूर्व जी, अभी गौतम अदानी जी के सामने आपके पास कुल मिलाकर सिर्फ 45 सेकंड हैं इन्हें इम्प्रेस करने के लिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी खुशी हो रही है सर मिलके। अब हमने 2020 में स्पेस फील्ड्स की शुरुआत की, जब स्पेस प्राइवेटाइजेशन अनाउंस हुआ। ऑल क्रेडिट टू यू सर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सच अ यूनिक प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री। आपका जहाँ तक विजन रहता है नेशन बिल्डिंग के लिए, एंड हमें जैसे लीडर से भी सुनने को मिला 50 ईयर्स आगे कैसे देखना है, वो थॉट प्रोसेस आई थिंक मैं यहाँ से वापस लेके जाऊँगा सर।
0: मैनी कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। काफ़ी खुशी लग रहा है। आई थिंक संबलपुर से शांतिग्राम का ये जर्नी सक्सेसफुल रहा, एंड इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। जैसे कि इस प्लेटफॉर्म ने ना सिर्फ ग्रासरूट इनोवेशंस को मंच दिया है, बट ऑल्सो लॉट ऑफ डीप टेक एंटरप्रेन्योर्स को भी रिकॉग्नाइज किया है एंड अवार्ड किया है। तो आई थिंक दिस रिप्रेजेंट्स द इंडिया स्टोरी कि वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स इन आर ओन माइट।
0: फोर्थ पोजीशन पर जो है उनका नाम है जेन रोबोटिक्स के विमल गोविंद, अरुण जॉर्ज एंड अभिलाष।
2: इनसे मिलिए, ये हैं जेन रोबोटिक्स के फाउंडर्स। जहां मैनहोल की सफाई इंसानों की जान के लिए खतरा बन गई थी, वहीं इन्होंने बनाया एक ऐसा रोबोट जो इंसान की जगह मैनहोल में उतरकर सफाई करता है।
3: Bendicoot robot is actually the first product in the world to invent and do the complete aspect of a man inside a manhole. So it's replaced manhole to robohole.
4: In simple words, if you ask what is Gen Robotics story, it is very simple: using robotics and AI to empower people from sewer to space.
2: Vande Bharatam ke stage par inhone paya Vande Wings, mentorship, VCs se connections aur Adani Group ke saath collaboration.
0: कंग्रेचुलेशन, आपको मिलती है वंदे भारत की ट्रॉफी और 20 लाख रुपीस इन कैश। यू हैव 45 सेकंड्स टू इंप्रेस गौतम अदानी जी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
4: द रीजन व्हाई वी केम हियर टू शोकेस द प्रॉब्लम दैट वी आर सॉल्विंग, लाइक द मैनुअल स्कैनिंग, एवरी 5 डेज वन पर्सन इज डाइंग। सो एनी सपोर्ट टू मेक इट हैपन एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम द ग्रुप विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर द नेशन, फॉर अस and for the innovators also. That's humble request from our side. Thank you.
0: You're already wearing the Vande Wings.
4: Yeah.
0: Yeah, you've already been promised.

0: support. All the best. Do well.
1: Vande Bharatam initiatives actually came in a right time where India is exploding with innovations and figuring out and correctly tracking it, a national platform is required, and it perfectly aligned with it. And I believe this empower the next generation of Indian innovations.
0: Third position par jo hai, unka naam hai Ambiator ke Tiger and Jiten Desai.
2: टाइगर एस्टर एम्बिएटर इकोसिस्टम के फाउंडर. इन्होंने जब देखा कि एसी घरों को तो ठंडा कर रहा है लेकिन बढ़ा रहा है प्लैनेट पर गर्मी भी, तो ये चल पड़े उसका हल निकालने.
3: इस प्रोडक्ट का आइडिया आया था कोविड के टाइम पे. हमने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए जो 100% फ्रेश एयर लेके आता है, जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. तो हमने एम्बिएटर निकाला है एज अ ब्रिज बिटवीन एयर कूलिंग एंड एयर कंडीशनिंग.
2: वंदे भारतम के स्टेज पर इन्होंने पाया रियल एस्टेट व एयरपोर्ट्स में स्केल अप करने का रास्ता.
0: आपको मिलती है ट्रॉफी और साथ में 25 लाख का कैश प्राइज.
4: थैंक यू सर. आई थिंक दिस इज डूइंग अ लॉट फॉर द इकोसिस्टम इन इंडिया. इंडिया इज वेरी पैशनेट एंड वी वांट टू डू वेरी बिग थिंग्स. And your support and the energy that you've given us, the positive energy, I think it'll take us to big heights. Thank you so much for the opportunity.
3: Thank you.
0: Well done.
3: Thank you. The gears on this are the ones that are turning for India. And that means that next year's 100,000 from the grassroots is absolutely mandatory. Let's find them, bring them, and show them how amazing this is.
0: Second position par jo hain, unka naam hai Homeo Innovations ke innovators Deepak Reddy and Amresh Jana.
2: Jis zameen par pattharon ki wajah se kheti nahi ho pati thi, आज उसी समस्या का सलूशन बनाने वाले इस किसान पुत्र को मिलिए दीपक रेड्डी कोंगरी और अमरेश जाना से, फाउंडर्स ऑफ होम्या इनोवेटर्स.
5: मैं ये नोटिस किया कि थोड़ा सा मेरा एग्रीकल्चर लैंड बैरन पड़ा हुआ है. पत्थर के वजह से हम एग्रीकल्चर का काम इस पे नहीं कर सकते, तो उसी के साथ मैंने एक छोटा सा प्रोटोटाइप ने बिल्ड कर दिया.
6: मैं जो भारत का लाखों किसानों का आवाज बन के आया हूँ, जो हर साल फसल उगने से पहले पत्थरों से लड़ते.
2: वंदे भारतम के मंच से इन्होंने किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का अपना इनोवेशन मेंटर्स के सामने रखा और पाए 2 करोड़ रुपए 10% की इक्विटी पर.
0: कंग्रेचुलेशंस, आपको मिलती है वंदे भारतम की ट्रॉफी और 30 लाख प्राइज मनी. गाइस, इज़न दिस मोमेंट बिगर देन द इन्वेस्टमेंट दैट यू गॉट? दिस इज अ बिग मोमेंट फॉर यू गाइस. एंड आपके पास में 45 सेकंड्स टू थैंक गौतम अदानी जी.
5: सर, मैं तेलंगाना से एक छोटा सा गांव से हूँ सर. जो मेरा फादर जो है फार्मर है, तो हमारा छोटा सा एक जमीन है, उसमें से कई हिस्सा बैरन पड़ा हुआ है, वो भी जनरेशन्स. मैं थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करने लगा तो मेरे को ये पता चला इस लैंड में बहुत सारा पत्थर है, तो पत्थर रहने वजह से हम खेती नहीं कर पा रहे. तो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे को ये मौका लगा कि मैं इस जमीन को दोबारा खेती का लायक बनाना.
0: ओके, मैं आपकी जगह बोलता हूँ. मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये बोलता कि सर, मैंने ना अपनी पढ़ाई छोड़ के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के, मैं अपनी मिट्टी पर वापस आया. मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पिता, जो मेरे किसान हैं, उनकी खेत से पत्थर निकालूंगा. और सिर्फ पिता के खेत से नहीं, मैं बाकियों के खेत से भी किसान पत्थर निकालूंगा. वेल डन, आप सबको छोड़कर वापस आए. दैट इज वॉट यू नीड टू टेल हिम. मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन.
5: थैंक यू सर. या हम जो अवार्ड या जो भी आज हमको मिला, तो इससे हम फील करते कि हमारा रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गया. तो हम इसी रिस्पांसिबिलिटी के साथ आगे नेशन बिल्डिंग के काम पे हमारा फुल 100% देने के तैयार है. हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पे हमारा रोल जरूर फुलफिल करेंगे.
0: अभी इनकी प्रॉब्लम नहीं है सर, आपके सामने आके शब्द नहीं निकलते हैं, क्या करें. All right, बारी आ गई है फर्स्ट पोजीशन।

0: कौन आज वंदे भारतम के फाइनलिस्ट इनोवेटर्स में नंबर वन पोजीशन पर होंगे. सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द विनर ऑफ वंदे भारतम. उनका नाम है माइकॉप के फाउंडर शशांक शेखर, अंकिता सिन्हा एंड ऋषभ माथुर.
1: माइकॉप इसके फाउंडर्स हैं अंकिता, शशांक और ऋषभ. और ये तीन IITians देश में इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं थ्रू 3D कंक्रीट प्रिंटिंग.
2: हमारा विजन है कि हम डिजिटली ऑटोमेटेड प्रोसेसेस के द्वारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का चेहरा बदल सके.
1: वंदे भारतम के मंच से इन्होंने जब अपना इनोवेशन दिखाया, सभी मेंटर्स को खूब पसंद आया.
3: अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड ट्रस्ट मी फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, एनीबॉडी हु कैन सॉल्व कंस्ट्रक्शन, दे वुड बी रियल एंजल्स फॉर एनी होम बायर.
4: 110 डील डन.
5: थैंक यू सो मच. ओह माय गॉड.
1: और इन्होंने पाया 30 करोड़ रुपए का निवेश और सपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट.
2: हमारा जो फर्स्ट प्लांट था वो यहाँ से, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, शांतिग्राम के जस्ट पीछे है. तो वो डिस्टेंस कवर करना, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले तो 600 मीटर की दूरी होगी, बट फॉर अस वो डिस्टेंस कवर करना बहुत बड़ी बात थी. वो दूरी हम इस तरीके से पूरी कर पाएंगे और यहाँ पे खड़े होकर कुछ लेके जाएंगे इतना बड़ा कंपनी के लिए. I think when I applied, I had not expected it. शायद सपने ऐसे सच होते हैं.
0: बिल्कुल ऐसे सच होते हैं और इस मंच पर तो बहुत ही खूबसूरती सच होते हैं. अगर आइडिया में है दम तो कहो
4: वंदे
0: भारतम. आपको मिलती है वंदे भारतम की ट्रॉफी और 50 लाख प्राइज मनी. ये तो आपको मिल गए अदानी ग्रुप से. ओके, आपको वंदे भारतम प्लेटफॉर्म से. मेरी तरफ से आपको मिलते हैं 1 मिनट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
2: भारत का जो हम सब सपना देख रहे हैं उसमें माइकॉप की तरफ से हम 3 core pillars में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं. पहला है डिफेंस, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है. दूसरा है घर, क्योंकि वो एक बेसिक नीड है एंड वी बिलीव कि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना सब सच में साकार होना चाहिए. और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वो हमें बताता है कि हम एक देश के तौर पर कितनी तरक्की कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी से हमने बना दी है, अब वक्त है कि उस टेक्नोलॉजी को स्केल तक ले जाया जाए. इसके लिए हमें चाहिए आपकी पार्टनरशिप, आपका सपोर्ट, थोड़े ज़्यादा पैसे और बहुत सारी मदद.
0: ये आपके आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं?
2: सब बोलते हैं ना कि शूट फॉर द मून, एटलीस्ट यू विल एंड अप विद द स्टार्स. आई थिंक मून, स्टार, यूनिवर्स, सब आज रिसीव्ड एवरीथिंग. सो
0: मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस. डू वेल. आई थिंक
2: थैंक यू सो मच. अगेन बिलीव नहीं हो रहा है अभी भी. टॉप 5 तक का तो सोचा था मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फर्स्ट पे एकदम मतलब दुनिया ही बदल गई.
0: कैन वी हैव ऑल द विनर्स. प्रीति मैम, कैसा लगा आपको ये थॉट? एक्चुअली ये बड़ा दिल का शो था, मतलब हमने सबने बड़े दिल से किया एंड आप सबकी आंखों में देख सकती. सो ग्रेटफुल. तो एक कुछ आप इनसे कहना चाहती हैं तो हम सुनना चाहें. मैं सुनना पर्सनली सुनना चाहूँगा.
6: ये बहुत इमोशनल है और जिस तरह से ऐसा हुनर हमारे कंट्री में है वो देख के बहुत आनंद होता है. एंड आई ऑल्सो फील सो प्राउड कि विकसित भारत की तरफ ये लोग, ये बच्चे जो आज देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं और उनकी जो इनोवेशंस आर टूवर्ड्स द विकसित भारत, इट्स वंडरफुल टू सी दिस.
0: And it's wonderful to have you here and encourage them. Thank you so much. This is not the celebration of the grand finale. Ye celebration hai ek nayi shuruaat ka. Vande Bharatam.

0: एक ख्वाब के साथ शुरू हुआ था ये सफर, और इस सफर से जुड़ते गए आइडियाज, इनोवेटर्स और उनके सपने। 24 जून गौतम अदानी जी के जन्मदिन पर शुरू हुआ वंदे भारतम, एक ऐसे विजन के साथ जो भारत की मिट्टी से निकले आइडियाज को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का विश्वास रखता है। देश के कोने कोने से आए इनोवेटर्स, हर किसी की अपनी कहानी थी।
1: मैं यहाँ आज भारत का लाखों किसानों का आवाज बन के आया हूँ।

तो कई को मिला नेटवर्किंग सपोर्ट, कई को मिले हॉस्पिटल कनेक्ट, इंजीनियरिंग सपोर्ट और ब्रांड कनेक्ट, तो कईयों को मिली डायरेक्ट मेंटरशिप, किसी को मिला स्टेक होल्डर्स से सीधा कनेक्ट, तो किसी को मिली अडानी के धारावी और अडानी डिफेंस जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में सीधी एंट्री, और कई इनोवेटर्स को मिला बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि माइकॉप को 110 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर मिले 30 करोड़ रुपए, हेयर ओरिजिनल्स को 100 करोड़ के मैक्स कैप पर 2 करोड़ रुपए, भौमे इनोवेशंस को 10% इक्विटी पर 2 करोड़ रुपए, एक्स स्लीप केयर को 45 करोड़ की वैल्यूएशन पर 3 करोड़ रुपए, प्राइमरी हेल्थ टेक को 100 करोड़ की वैल्यूएशन पर 1 करोड़ रुपए, वी जीनोमिक्स को 50 लाख रुपए, हम्बल बी को 5 करोड़ रुपए, चिल्हो को 1 करोड़ रुपए, टॉर्चिट को भी दिव्यांग बच्चों के लिए 50 लाख रुपए के डिवाइसेस खरीदने का मिला कमिटमेंट, तो स्कॉन्टो को मिला अदानी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट और 20 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर, और इस पूरे सफर में वंदे भारतम पर कुल 50 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स ने इन आइडियाज और इनोवेटर्स के विश्वास को एक नई ताकत दी।

0: मैं ये सोच के उठती हूँ कि मैं आज कुछ ना कुछ एक नई चीज़ सीखूंगी। और ट्रेनिंग तो सब सेम करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करता है वही आगे निकलता है। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आज और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। लाइफ में भी और बॉक्सिंग में भी गिव अप नहीं करना। अगर हम हार मान जाएंगे तो ना तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और ना ही बॉक्सिंग, क्या किसी भी गेम में नहीं आगे बढ़ सकते।
1: मेरा नाम मीनाक्षी हुड्डा है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मैं बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर

0: मेरा नाम सिमू है और मैं 23 इयर्स की हूँ और मैं असम से बिलोंग करती हूँ, बट मैं दिल्ली के थ्रू खेलती हूँ। इधर आ, इधर आ। हेलो, कहाँ से आई तू?
1: हेलो सबको,
0: हैप्पी बर्थडे।
1: हैप्पी बर्थडे रिहाना,
0: हैप्पी बर्थडे।
2: हाथ मिला,
3: थैंक यू।
0: चॉकलेट दे,
1: चॉकलेट दो,
4: चॉकलेट।
1: चॉकलेट कहाँ है तुम्हारा?
3: हेलो सुनीता,
0: पूरा रियलिटी खोल देती है ये।
1: और क्या,
0: मैं हाथ से नहीं खाऊँ, हाथ से खाऊंगी। इस वीडियो में हमारा पोहा आएगा अभी।
5: देखो बत्तख पानी में तैर रही है, इनको कितना मजा आ रहा है।
6: हेलो हेलो,
5: मैंने 2013 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी इसी स्टेडियम से, और मैं यहाँ पे तब से ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। रोहतक से लिवरपूल तक का सफ़र काफ़ी टफ रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो मेरे बेसिक कोच हैं विजय हुडा, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को मोटिवेट भी किया स्टार्टिंग में। तो मतलब ये तो है नहीं कि प्लेयर हर बार जीतता ही है, हारता भी है, तो हारने के बाद जो साथ देता है वो एक कोच ही या फिर फैमिली वाले ही होते हैं। बाहर वाले तो बस बातें बना देते हैं कि हार गई है, लेकिन एक कोच को ही पता होता है कि उसने कितनी ट्रेनिंग की है खिलाड़ी ने और कितना मतलब स्ट्रगल किया है उसने। अब सबको मेरी मतलब जीत का तो पता है कि मैं लिवरपूल में मैंने मेडल जीता, लेकिन उसके पीछे का किसी को नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत की, कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना किया। तो बहुत टफ था।

एक छोटे से गांव रुड़की गांव से हूँ, तो गांव में तो लड़कियों का यही रहता है कि उसकी जल्दी से शादी कर दें या फिर घर का काम सिखा दें, ऐसा ही। लेकिन जैसे जैसे हमारे मेडल आने स्टार्ट हुए बॉक्सिंग में या फिर किसी भी गेम में, तो काफ़ी सपोर्ट करता है हमारा पूरा गांव ही सपोर्ट करता है।

0: अगर हम स्ट्रगल सोच के हम रह जाएंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम बोलते कि यार मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मैं लड़की हूँ, मुझे क्या करूँगे। लोग काफ़ी पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरे बेटी ब्लाइंड है, उसको मैं हॉस्टल नहीं उनको मैं हॉस्टल नहीं भेजूँगी, क्या वो क्या कर लेगी जाके, भी उसको वैसे भी शादी करके भेजना है। लेकिन ये जो सोच है ना, ये सोच कभी एक पेरेंट्स को नहीं रखना चाहिए।
1: जल्दी धो,
0: बच्चे को दे दो। नहीं नहीं, मेरा मैं जब 5 साल की थी तब से मैंने खाना बनाना भी शुरू किया है, मैं सब कुछ बना लेती हूँ।
1: मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं और हम 4 बहन भाई हैं। और एक मतलब कि प्लेयर को निकालना, प्लेयर की डाइट भी और वैसे भी इक्विपमेंट के भी बहुत सारे पैसे लगते हैं उन सारी चीज़ों में। तो स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई उनको। मैंने फर्स्ट नेशनल 2016 में खेली थी और मेरा उसमें गोल्ड मेडल आया था। फिर उसके बाद और ज़्यादा मतलब कि घर वालों का भी थोड़ा और ज़्यादा साथ मिला। बॉक्सिंग में जैसे 10 वेट कैटेगरी है गर्ल्स में, बॉयज़ में। मैं 48 में खेलती हूँ, फर्स्ट वेट में खेलती हूं।

जब मैं पैदा नहीं हुई थी 2001 में, तभी जब मैं मम्मी की गोख में थी, तभी 7 मंथ के, तब भी पापा छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको लगा है कि मेरा भैया भी जो है वो भी डेफेंडा में ब्लाइंड है, ना सुन पाता है, तो उसके लिए उसको लगा कि मेरा दूसरा बच्चा भी ऐसा होगा, तो ये सोच के वो चला गया। तो उसके बाद मैं पैदा होने के बाद जब मैं 1 साल की थी, तब वो लेने आया था, पर मम्मी ने दिया नहीं, क्योंकि जब मुश्किल के वक्त में वो साथ नहीं दिया। तो अभी मैंने 1 साल उसको बड़ा कर दिया है, और अभी तो मैं अगर 1 साल में कर सकती हूँ, तो मैं लगभग और भी साल में कर पाऊँगी बोल के, ये सोच के मम्मी ने बोला मैं अपना बच्चे को नहीं दूँगी बोल के बोल दिया। तभी मम्मी ने काम करना शुरू किया, दूसरे के घर में खाना बनाना, ऐसे ही हम लोग को बड़ा किया, मतलब इतना एजुकेशन भी हेल्प किया है, हर चीज़ में हम लोग को हेल्प किया है।

0: बचपन से तो उसने खेल स्टार्ट कर दिया था सातवीं छठी सातवीं क्लास तक। और बच्चे जाते थे पड़ोस से भाई मैं भी खेलने जाऊँगी, स्टेडियम बना था यहाँ गाँव में, तो सभी बच्चे खेलने जाते हैं। बोला मम्मी मैं भी जाऊँगी, मैं भाई जाऊँ। फिर इसने देखा कि मैं तो बॉक्सिंग खेलूँगी, मुझे पसंद है खेलना, कैसे बॉक्सिंग खेलते हैं वो तो भाई बच्चे देखे दे ऐसे खेलते हैं। तो भाई जब ने पता चले कि पापा तो पहले तो कुछ नहीं कहते, बाद में मना करने लग गए थे कि भाई ऐसे बच्चे को नहीं खिलाते, और बोल देते कहीं चोट लग जाएगी आँख नाक में। फिर ये बोली नहीं मैंने तो यही गेम करना है तो करना, फिर मैं चलो भाई कर ले।
1: I just passed out my 10th standard and I was not able to tell to my parents that I am building this kind of venture, because if I would tell my parents, they will definitely tell no, you should not do this because you should focus on your education first, then after completing all the education you focus on whatever you want to be. But I was so convinced from inside that this is a problem, if I wouldn't solve now it could be impacting many lives across the country.
2: ये इंडियन ड्रेस है, प्लेइंग ड्रेस ड्रीम होता है, हर किसी को नहीं मिलता ये पहनने के लिए, लेकिन मुझे मिला है पहनने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर कोई लड़ते है इसको पहनने के लिए और हर किसी का किस्मत नहीं होता है, लेकिन मेरे किस्मत ने मेरा साथ दिया मुझे लगता है। मेरा जर्सी नंबर 1 है। ठीक है सर, बाय
3: बाय
2: बाय सबको, थैंक यू। यहाँ से लेफ्ट, भैया बस नंबर 78 आने से बता देना, 75 और
4: 78।
2: हाँ मोती नगर। कभी कभी ऐसा होता है कि अनसुना कर देते हैं लोग, लेकिन मैं सोचती हूँ तब मुझे फीलिंग्स आती है, काश मुझे दिखता तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। असम से दिल्ली आना मेरा एजुकेशन की पर्पज़ से आना हुआ है 2019 में। क्रिकेट खेलना 2022 में मैंने शुरू किया। व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले लाइक नो वन वर सपोर्टिंग मी, एवरीवन वाज टेलिंग बीइंग अ गर्ल बीइंग अ ब्लाइंड हाउ विल यू एबल टू प्ले, बट दैट आई शोन इनटू एक्शन।

0: if our Indian youth or Gen Z, so-called what we say, our Indian strength is our youth, first point, because we are in number, we are the biggest youth population of the world. If you see a decade back, China was having on the position one for youth population. But China have made the youth not as a liability, but as an asset with a right skills at right point. If our Indian youth adapt right skills at right point, this is the right time. I believe humko US banne se nahi, humko India banne se koi nahi rok sakta.
1: अभी तक भी लोग जानते नहीं है ब्लाइंड क्रिकेट क्या हुआ है. वर्ल्ड कप जीतने के बाद थोड़ा सा फेमस हुआ है कि हाँ, मतलब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट भी होता है, लड़कियाँ भी खेलते हैं, ऐसा अभी तक लोगों को पता चला है. इतना उससे पहले किसी को पता नहीं होता था कि ब्लाइंड क्रिकेट भी है. हाँ, बॉयज़ के लिए है, लेकिन गर्ल्स के लिए तो नहीं है कुछ भी. लेकिन ये वर्ल्ड कप ने हर चीज़ पता कर दिया लोगों को, क्या है नहीं है.
2: मतलब सोचती थी मैं कि लेकिन मेरे को ये नहीं था कि मैं शायद जीत पाऊँगी. मेरे को ये था कि पता नहीं कब मैं भी जीतूँगी. तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था जब मैं लिवरपूल में जीती. बहुत मतलब इमोशनल हो गई थी मैं काफ़ी. कुछ समझ नहीं आ रहा था रिंग पे कि मैं मतलब कि मेरा हाथ उठा तो मेरे को मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी कि क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं. कुछ सेकंड के लिए तो फिर थोड़ा नॉर्मल हुई फिर.

मेरे को और ज़्यादा ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, और इस वेट में भी रहने के लिए मेरे को और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार गोल्ड आना तो आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल रहता है।

0: which Barakhamba Modern School, Delhi. As I am from Delhi team, all Saturday, Sunday I come for practice. Because of this, I am winning the World Cup.
1: अब हम स्टेडियम पहुंच चुके हैं और आज की ट्रेनिंग करेंगे अब थोड़ी देर में स्टार्ट।
0: दो ही चीज़ है, फोकस करना है और अपना मन में एक इशारा रखना है कि अच्छा चलो अभी इसने बॉल छोड़ दिया तो हम तो अभी आने वाले हैं। सो ये दो ही चीज़ हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। You can see the ball again, you can hear the sound also. This ball is the main thing which through which we play. First we need to focus on the sound. When the bowler says that ready bat, that means I'm ready. Like, so when the bowler says play, at the time play means the ball is relieved. बॉल जब छोड़ देते हैं ना तो हम लोग को एटलीस्ट हम गिनती करते हैं, एक गिनती करते हैं और आवाज़ में आवाज़ मतलब बॉल की आवाज़ हम सुनते हैं, फोकस करते हैं।
2: विकसित भारत विच अवर मोदी जी इज प्लानिंग 2047 इज समथिंग विच विल टेक अवर इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल।
0: व्हेन आई जॉइन फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा प्रेशर लगा था कि यार मैं कैसे खेलूंगी, हाउ विल आई प्ले यार, इट्स सो टफ। व्हेन आई सो दैट girls are playing, then I just feel myself that why I can't play, I also can't play. If they are able to play, then I also.
1: हार जीत तो चलती रहती है और एक अगर मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: यार लोन भूल गया मैरी। इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
1: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
1: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म, इसलिए स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
4: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
5: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
6: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
7: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
8: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
9: High rate, check the audio.
7: Let's do it. Let's do it. Let's start.
10: Breaking stories were jumping.

0: प्योर, वेरी प्योर एज इन आउट ऑफ 10 करोड़ पार्टिकल्स ओनली वन पार्टिकल कैन बी इम्प्योर. सो इमेजिन अ सिटी लाइक दिल्ली एंड जस्ट वन स्क्वायर मीटर एरिया कैन बी फॉल्टी. सो दैट काइंड ऑफ प्योरिटी इज देयर. सो गेटिंग द मटेरियल्स एंड मशीन्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव गॉट एक्सट्रीमली गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट, मच मोर देन वॉट आई एक्सपेक्टेड एवर. थर्ड इज गेटिंग मोर फैब्स, fourth is getting more ATMP units, and we'll be focusing more on the advanced packaging because Moore's law is out. Now it's advanced packaging which is adding the value, and advanced packaging is very complex, but we must get it. We got one of the technologies which is world's latest technology, three-dimensional packaging. That plant is now getting constructed as part of Semicon 1.0, but we have to work a lot more focused on the advanced packaging. Fifth pillar is R&D, and sixth pillar is talent. In the first version, we focused more on the design talent. So we trained 70,000 students, engineers, in 400 universities. If you count a similar program outside China, I don't know.
1: I remember you had raised a target of about 1 lakh students. You're already 70% there.
0: Yeah, yeah. So that's 1 lakh was one decade. This is in four years, we have been able to do 70,000. So it's good. But this time, we'll be having an equally large target for the technicians. So we are taking 1 lakh technicians to be trained, and we have got a very good input from the industry, a program which is very structured program, L1 program, L2 program, L3 program, L4 program. So very structured program. We'll be very soon launching it for our youngsters. And I can very clearly see, given what is happening around, easily more than 1 lakh jobs will be created in the semiconductor ecosystem in the coming years, in coming 3 to 4 years itself.
1: You know, and I keep noticing, sir, bar bar aap jo ek shabd ka istemal kar rahe hain, ecosystem, rather than focus only on fab, kyunki pradhanmantri ne bhi jab apni yahan par apna opening bhashan diya tha, unhone kaha tha ki ecosystem creation bahut zaruri hai. Abhi tak ye ecosystem hamare desh mein kyun nahi tha? और क्या आपने ऐसा अलग किया है पहले की सरकारों से, पहले के जो द रेजिम्स व्हिच वर देयर अर्लियर, व्हाट हैव यू डन डिफरेंटली एंड व्हाई दिस इतना ज्यादा फोकस इकोसिस्टम पर क्यों है, क्यों ये जरूरी है हमारे देश के लिए?
0: इकोसिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको जापान का, जापान में इकोसिस्टम होने के कारण दे कुड वेरी इमीडिएटली कम अप. इकोसिस्टम नहीं होता, देयर आर सो मेनी कंट्रीज व्हिच हैव फेल्ड, और उनके फेलियर के पीछे एक ही रीजन था कि उन्होंने जस्ट कहा कि एक फैब लेके आ जाओ, बाकी सब अपना आप हो जाएगा. नहीं,
1: हमारे देश में क्यों नहीं बना बेका की इकोसिस्टम?
0: इकोसिस्टम तो सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ही तो अभी चालू हुआ है. सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम ही अभी चालू हुआ.
1: तो आपने क्या डिफरेंट किया कि अब इकोसिस्टम, मतलब
2: थॉट अबाउट द इकोसिस्टम,
1: द पॉसिबिलिटी वाज ऑलवेज देयर दैट सच इकोसिस्टम कैन एग्जिस्ट इन आवर कंट्री. व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली फ्रॉम अर्लियर?
0: वी थॉट वेरी मेथोडिकली. वी लिस्टेड आउट ऑल द थिंग्स व्हिच गो इनटू semiconductor industry ecosystem. So what are those things? For example, one of the first exercises that we did was 250 specialty chemicals which go into semiconductor industry. Un sab ki lambi ek list banai, kaun unke manufacturers hai. We contacted all of them, we invited all of them to come to India. They were like surprised ki somebody is inviting them to India. Then we came to the material manufacturers, each and every consumable which goes into semiconductor manufacturing. उन सब लोगों को बुलाया, उन सब की लिस्ट बनाई, सबको इनवाइट किया इंडिया में, सबके साथ बातचीत की, क्या दिक्कत है आपको, क्या कर सकते हो, पार्टनर्स किस तरह के चाहिए, क्या आपको फैसिलिटीज चाहिए, वो सारी चीज़ें उनके साथ डिटेल में डिस्कस की. फिर इक्विपमेंट, ऑल द मशीन्स विच गो इनटू इट, एंड आई पर्सनली विजिटेड ऑल द अबाउट 35 वॉट मशीन मेकर्स. उनसे गए, बातचीत की, क्या आपको यहाँ पे डिफिकल्टी आती है, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, हाउ टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम ऑफ प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह के लोग हैं जिनके साथ उनको काम करना है, वो सारी चीज़ें जब काम की. देखो, इस प्रोग्राम की बिगनिंग में प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियरली हमको कहा था, डोंट टेक शॉर्टकट्स, इवन इफ इट गेट्स डिलेड बाय अ फ्यू ईयर्स, डोंट वरी, बट डू समथिंग विच विल बी गुड फॉर द कंट्री फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स. थिंक 20 ईयर्स, पीएम साहब ने एकदम क्लियर हमें कहा था कि थिंक 20 ईयर्स एंड थिंक ऑफ द इकोसिस्टम. कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है ह्यूमन हिस्ट्री में. दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग विच इज़ मैन्युफैक्चर. आई गिव दिस एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू राइट योर नेम ऑन द नेल, यू कैन राइट इट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट ट्राई टू राइट द नेम्स ऑफ ऑल योर क्लासमेट्स इन ऑल योर क्लासेस, on this nail.

0: system where anybody can come in. No, we are very, very meticulously selecting the participants so that the journey which happens over next 20, 30 years is a journey where we feel satisfied that yes, we developed a new industry in our country. Even, let me, with full humility, I'm saying, all the five units which have started commercial production, whatever capacity they can create is all fully booked already. The fab which will come in 2028, more than half of it is already booked now, even though the first production has not started. Because the world is looking at India in a very different way now. One, our Prime Minister's foreign policy has established India as a trusted partner. There is a lot of trust about India. Second, the methodical way in which we have rolled out and executed this program, that methodical way gives the confidence to the industry, and industry gives the confidence to their customers.
1: That you're a solid partner, but aapne ek bahut zaruri baat kahi ki jab aap job creation ki baat kar rahe hain, tier 1 you are getting a very good response, but hamare regional centers mein, kyunki jab chips ki baat karte hain, ek to logo ke dimag mein thoda sa confusion hota hai ki bhai chips se hamari zindagi mein kya ho raha hai. Job creation is something that they can relate to. To drone didi se lekar ke aapke Nagpur mein baitha hua ek ladka bhi soch raha hai, when will I get to connect with this? Ye hamare regional centers mein kab expand?
0: Aap guess karo ki students जो चिप डिज़ाइन कर रहे हैं, जिनकी चिप्स मैन्युफैक्चर हुई है, सबसे छोटे से छोटा शहर आप इमेजिन करो.
1: छोटे से छोटा,
0: चलो छोटे दिसपुर में बच्चों ने डिजाइन किया.
1: दिसपुर
0: में डिजाइन किया.
1: Wow. I would have never imagined, because I can say
0: Meghalaya mein design kiya.
1: Perhaps 80% people won't be able to face this.
0: Barampur mein design kiya hai.
1: Barampur mein.
0: Odisha ke Barampur mein design kiya hai. Jammu mein design kiya hai. पूरे देश भर में 400 यूनिवर्सिटीज इन टीयर 2, टीयर 3 से भी नीचे यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स ने डिजाइन किया. आई इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स. जो कॉन्फिडेंस उनके पास है, दुनिया में अगर आप ऐसा प्रोग्राम दुनिया में कहीं देखोगे तो यू वुडंट बी एबल टू काउंट मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज जिसमें इस तरह का प्रोग्राम. वी हैव डन इट इन 400 यूनिवर्स. इमेजिन अ स्टूडेंट गोइंग टू द इंडस्ट्री एंड टेलिंग दैट आई हैव डिजाइन दिस चिप, आई हैव taped it out as in manufactured it, and I've used it in a board, actually tested it. Is tarah ki capability bahut kam hai duniya mein, and we have given them industry grade tools. Cadence ka, Synopsys ka, Siemens ka, we have given them industry grade tools. Aisa nahi ki just test lab waisa.
1: You know, this is so fascinating, क्योंकि सर एक ऐसे वक्त पे हम बात कर रहे हैं जब सब लोग जेंजी की बात कर रहे हैं. एक ऐसा वक्त होता था जब एस्पिरेशन बस इतना होता था कि आप अपना इंजीनियर, डॉक्टर, शायद लॉयर बन जाएं. और अब आप कह रहे हैं कि दिसपुर या फिर बहरामपुर या फिर आई डोंट नो राउरकेला, बोलपुर में बच्चे बैठ करके, दिस इज, वुड यू से also the language or the grammar of Gen Z that everyone keeps talking about, ek wo bhi Gen Z
0: hai. Himant Biswa Sarma ji kehte hai na ki meri rajneeti semiconductor hai.
1: That's true though.
0: Unhone kaha mera campaign semiconductor hai. Assam mein ho raha hai plant, it's a fantastic plant, world class, Jagirog mein. Assam se bhi, Guwahati se bhi kitna dur hai. Ye ho raha aaj, that's a reality. That's what the industry was saying. 4-5 साल पहले जब आप लोगों ने लॉन्च किया था, वी यूज टू थिंक कि इंटेंशन है. 50-60 साल से इंडिया हैज बीन सेइंग दिस. आज है कॉन्फिडेंस.
1: आपने टेपिंग आउट की बात की. आपने इनॉग्रल स्पीच में द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट टेप आउट मींस दैट व्हेन इट गोज इनटू प्रोडक्शन फ्रॉम डिजाइन, बट द वर्क इज नॉट ओवर. फेज 1 से फेज 2 हो गया, बट फिर भी वर्क इज नॉट ओवर.
0: अभी तो स्टार्ट हुआ है. मैं तो कहता हूँ कि ये फाउंडेशन है, और पीएम साहब ने जो कहा है वो एग्जैक्टली सही कहा है. ये जस्ट एक फाउंडेशन है. अब तक फाउंडेशन बनाना भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन अब देखो बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस आएंगे. रिमेंबर जब एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ था तो कुछ लोगों ने फूड पॉइजनिंग की. रॉयटर्स जैसी एक संस्था ने इतनी फेक न्यूज चलाई कि मैरिड वुमेन को अलाउड नहीं करते, इस तरह की चीजें चलाई. इलेक्ट्रिसिटी के तार काटे गए, कई तरह के ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें पीपल हु डिडंट लाइक इंडिया टू कम अप एज अ मैन्युफैक्चरर, दे ट्राइड ऑल ट्रिक्स.
1: आप कह रहे हैं सबोटाज किया गया, इस तरीके
0: किया गया है
1: तार काट करके,
0: हर तरह से सबोटाज करने की कोशिश की. अब वो चैलेंज भी आएगा. अब हमें उस चैलेंज के लिए भी तैयार रहना चाहिए. अभी तो देखो ये बिगिनिंग है एंड द वर्ल्ड हैज टेकन नोट ऑफ इट. सो वंस पीपल स्टार्ट फीलिंग कि यार ये एक नया देश इस इंडस्ट्री में आया है, तो देर विल बी पीपल हु सपोर्ट अस, बट देर विल बी ऑल्सो पीपल हु अपोज अस एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स. आई हैव टोल्ड द एंटायर इंडस्ट्री बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इंसिडेंट्स नाउ.
1: और ये सिर्फ फिजिकल सैबोटाज नहीं है, एक नैरेटिव का
0: सैबोटाज ये होगा, पक्का होगा. देखना
1: किस तरीके का, आप किस तरीके के ऐसे चैलेंजेस फोरसी
0: करेंगे, साइबर अटैक्स करेंगे, लोग बहुत सारी फेक न्यूज डालेंगे, हर तरह का फिजिकल अटैक करने की भी कोशिश करेंगे. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, दिस इज नॉट एन इंडस्ट्री वेयर पीपल विल गिव इन सो इजीली, राइट? सो वी हैव टू मेक आवर स्पेस, वी हैव टू बी वेरी वेरी मेथोडिकल, वेरी cognizant of the challenges and do it.
1: Finally, I want to ask you, sir, this is generally, I would assume, a very young industry.
0: It is.
1: जो आप डिजाइन की बात कर रहे हैं, जिन लोगों से आप इंटरैक्ट करते हैं, जो लोगों को मैं देख रही हूँ यहाँ पे, दे आर वेरी यंग. वॉट वुड यू लाइक टू से टू द यंग पीपल ऑफ आर कंट्री? एंड बिकॉज ऑल द वेरी मेनी डिपार्टमेंट्स दैट यू हैंडल, दे ऑल इन सम वे ऑर द अदर इंटरैक्ट विद द यंग पीपल ऑफ आर कंट्री. वॉट वुड यू से टू देम टूडे एज मिनिस्टर, as somebody who has a stake in the growth of this country, what should they look forward to in the next 5 years?
0: One, there will be many more opportunities for semiconductor design, semiconductor manufacturing, semiconductor testing, semiconductor validation. It's a full value chain. Semiconductor equipment, materials, many more opportunities will come. Look at those opportunities, prepare for it. We'll help you from the ISM, from the mission, to help you prepare for that, one. Two, this is not an industry for people who are okay with taking shortcuts. This is an industry where you have to have real determination and discipline to be able to run it in a long term. I'll give you, there are multiple examples. Let me not give any personal example. So this is an industry which requires a lot of determination, a lot of discipline. So those who want to be in this industry, be prepared for a marathon.
1: No, please give me that personal example. It would be great to hear.
0: You have to be of that mindset where you go deep. It cannot be for people who just want to be in this industry for 1 year or 2 years. It's not for them. So youngsters, those who want to be part of it, think long term, go deep, really do deep dive. So,
1: final word. आपका जो एक वीडियो था जो बहुत लाखों लोगों ने देखा, जहां पे आप चिप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसके पीछे थॉट क्या था? क्योंकि लोगों ने कहा यहाँ पर प्रॉपर किसी प्रोफेसर ने शायद इतने अच्छे से नहीं समझाया होगा जितना अश्विनी वैष्णव जी ने समझाया.
0: I enjoy
1: that. What was the thought behind it?
0: I just enjoy the subject because I like it. We got this semiconductor in the third year of our BTech program. So there was a book called J.P. Hayes, John P. Hayes. So just 3 or 4 chapters were there in the syllabus, and rest of the book was for masters and PhDs. But in the third year,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: 28th September 2026. Only on the NDTV network.
1: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, good evening, hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Rahul Gandhi's Madhya Pradesh event stokes row. Comedian mimics Prime Minister Modi. Rahul laughs off comedian's mob mimicry. Draws BJP flak. BJP calls it an insult to Prime Minister's mother. A killer crash in Mumbai. Three youths killed, one critical after speeding BMW crashes on Mumbai's coastal road. Plunges off the bridge. Investigation underway. And probe widens in IIT Bombay suicide case. Professor has been booked for abetment to suicide. Professor accused of intentional caste-based insult. And India's medal tally goes up clearly here as one more. It rises to two as the winners lead the country on the international platform. Ukraine launches long-range strikes on Moscow, targets Russian key oil facilities. Zelensky calls on Putin to end the war. And the legal battle over control and governance at Tata Trust takes center stage as two of India's top lawyers speak to NDTV. Abhishek Manu Singhvi and Harish Salve join Rahul Kawal to discuss the Tata dispute, the legal questions involved and what lies ahead. And a mimicry act at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore has triggered a fresh BJP-Congress face-off. During the event, a young man mimicked Prime Minister Narendra Modi, with Rahul Gandhi seen laughing during the act. The BJP has alleged that the said act also crossed the line by referring to Prime Minister Modi's late mother. BJP has stepped up its attack on Rahul Gandhi and the Congress. Leaders including Kiran Rijuju, Pralhad Joshi and Yogi Adityanath have accused the Congress of insulting women, questioning its conduct and values. But the opposition has come in to defend Rahul Gandhi. SP Chief Akhilesh Yadav defended the principle of respect for every mother, while MTMC MP Saugata Roy said that he sees no fault in it and pointed out how Narendra Modi himself used to engage in similar political humour, to quote him here.
2: माँ को कुर्सी दो माँ माँ
3: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
4: दार खबरें दिखाएं और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की मां के लिए तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने मां परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
5: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: a fresh BJP Congress face-off. During the event, a young man mimicked Prime Minister Narendra Modi, with Rahul Gandhi seen laughing during the act. The BJP has alleged that the act also crossed the line by referring to Prime Minister Modi's late mother. BJP has stepped up its attack on Rahul Gandhi and the Congress leaders, including Kiran Rijiju, Pralhad Joshi and Yogi Adityanath, have accused the Congress of insulting women and questioned its conduct and value. The opposition has come in to defend Rahul Gandhi. You have SP Chief Akhilesh Yadav, who has defended Rahul Gandhi and said that the principle of respect holds true for everyone. You have MTMC MP Saugata Roy, who sees that he sees no fault in it and pointed out that Narendra Modi himself used to engage in similar political humor.
1: Aur bataiye, aur bataiye thoda.
2: Maa ko kursi do, maa, maa.
1: Aur bataiye, aur bataiye thoda.
2: Maa ko kursi do, maa, maa.
3: Congress ke युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
4: शानदार खबरें दिखाएं और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की मां के लिए, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने मां परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
5: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता है, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है। आज ही हमारे द्वारा बच्चों को जब स्कूलों की बात आती है तो सांदीपनी विद्यालय के बलबूते पर राज्य के अंदर ड्रॉप आउट जीरो अगर हुआ है तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
6: नहीं नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं है, ये तो मोदी जो बोला है उसी को दोहराया जा रहा है, किसी को अपमान नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक ह्यूमर का जगह होना चाहिए, वही है।
0: And now to this horrible incident reported in the city of Mumbai. Three people were killed and one critically injured after a BMW crashed on Mumbai's coastal road in the early hours of Sunday. A black BMW was traveling from Marine Drive towards Haji Ali when it reportedly crashed into a boundary wall before plunging off the bridge. The impact left the luxury car severely damaged, with its front end crushed and the windshield and the roof badly wrecked. Four people were rushed to Naya Hospital following the crash. Three were declared brought dead, while a 20-year-old man remains critically injured. The wrecked BMW was later lifted and removed from the crash site using a crane. Police is now investigating the circumstances surrounding the crash, including the reported speeding that preceded the accident.
7: एक सुबह 5:20 में कॉल था कि एक ब्लैक रंग की BMW कार, उसका नंबर है DD01 C6302। ये गाड़ी मरीन ड्राइव की तरफ से हजेली की उधर नॉर्थ बाउंड पे जा रही थी तो कोस्टल रोड से नीचे गिर गई और उसमें चार लोग थे। एक है आदित्य ओसवाल, वो जख्मी है, उस पर उपचार चल रहे नायर हॉस्पिटल में। और तीन लोगों की डेथ हो गई, तहरीर शेठ, आदित्य जकासनिया, शनय गजर, और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
8: A major accident was reported on the coastal road in the early hours today morning, and a BMW was overspeeding and it resulted into it crashing down and falling off from this bridge where we are present. This is the coastal road, and below you see the condition of the BMW car. Four people were into the car, and because of overspeeding, three of them, they lost their lives, whereas one is currently injured and is admitted to Nayar Hospital. According to the information from the Nayar Hospital CMO, three injured persons were declared brought dead. The deceased have been identified as 21-year-old Shanai Gajjal and 17-year-old Dhirya Seth. The identity of the third deceased, a 25-year-old man, is yet to be confirmed. A 20-year-old male is currently admitted to the trauma ward and is reported to be in critical condition. The police is present at the spot, and like you see, all of the forensic teams are too present trying to inquire about the evidence to understand what exactly led to this incident happening. If you see the BMW car, it was flying into onto this road when it oversped, and it resulted into it falling from this very road off the coastal road. The forensic team is currently collecting evidence from the car to understand and estimate the entire condition behind this major accident taking place. And if you see, four people were present, and because of overspeeding, it led to this major accident taking place on the coastal road.
0: Now shifting our focus to IIT Mumbai, where student Sahil Varkode and his death has triggered questions over circumstances surrounding the case and institute's handling of the matter. An FIR has been registered against IIT Bombay professor Surya Narayan Dulla in connection with the death of Sahil Dulla, and they've been booked for alleged abetment to suicide, caste-based intimidation and intentional caste-based insult. Two others accused have been left unidentified in the FIR. Protesting students are demanding an independent probe. They've also submitted a list of demands, including changes to the academic committees, grievance redressal and student welfare mechanisms. Meanwhile, Sahil's mother has alleged that her son was killed and seeking justice. The family has also alleged that Sahil faced harassment right before his death.
9: मेरे बच्चों को इन्होंने, जो डायरेक्टर है, उन्होंने टॉर्चर करके, जातिवाद करके उसको आत्महत्या करने को ये करा, उन्होंने क्या करे वो उसकी चौकसी होने को ना, और इसके लिए सरकार को मेरी गुजारिश है, उनको मेरे बच्चे के जैसा न्याय मिलने को ना, उनको टर्मिनेट करने को ना, यही मेरी गुजारिश है, उनको जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त करने की मैं गुजारिश करता हूँ।
10: देखो, जब ऐसी कोई घटना घटती है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में घटती है, तो ऑफकोर्स सरकार उसे सीरियसली लेके इसके ऊपर एक्शन लेती है। अभी इस घटना के बारे में जैसा मुझे भी थोड़ा बहुत बताया, लेकिन अभी पूरा डिटेल इसके बारे में मेरे पास ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन किस कारण हुआ या क्या वहाँ पर इश्यूज़ हुए थे, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके इसके ऊपर जाँच करके सही इसके ऊपर एक्शन लेगी।
11: जल्दबाजी हुई कहीं ना कहीं सिस्टम से, कि उसने ये माइंडसेट नहीं समझा स्टूडेंट का कि यार बच्चा है, गलती अब उसकी क्या एग्जैक्टली गलती थी, क्या नहीं थी। जितना सुनने में आ रहा है, जितना मैं मानता हूँ कि ये दिखती, तो कम से कम हकीकत होगी कि कुछ एकेडमिक मैल प्रैक्टिस हुई थी और उसको लेके कुछ उस पर एक्शन लेने की धमकी बोली या एक वार्निंग तो नहीं दी, क्योंकि अगर वार्निंग होती तो वो इतना नहीं डरता कि वो अपनी जान ले लेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो तरीका था हैंडल करने का इस चीज़ को, बहुत ही गलत था।
0: The ABVP has retained the control of Delhi University Students Union, winning three of the four key positions. BJP has described the result as a setback for Congress-led student outreach, while Congress continues to question the election process. ABVP, which is a student outfit of the BJP, has swept three of the four key positions within the Delhi University Students Union. Yash Dabas has been elected as the president, Riya Chowdhury as secretary, and Lakshya Raj Singh as joint secretary. As a surprise and a pleasant one, independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president position. The result also saw independent candidate break into the top panel. Now, both ABVP and NSUI have been the two principal key parties as far as the student politics within Delhi University is concerned. Now, my colleague Manogya Loiwal spoke exclusively to all the winning candidates of the ABVP. new DUSU President Yash Dabal, Secretary Riya Chavri, and Joint Secretary Lakshya Raj. Listen in to this.

0: himself used to engage in similar political humor.
1: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ। और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
2: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
3: दार खबरें दिखाएं, और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की मां के लिए, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने मां परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
4: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है। आज ही हमारे द्वारा बच्चों को, जब स्कूलों की बात आती है तो सांदीपनी विद्यालय के बलबूते पर राज्य के अंदर ड्रॉपआउट जीरो अगर हुआ है तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
5: नहीं नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं है, ये तो मोदी जो बोला है उसी को दोहराया जा रहा है, किसी को अपमान नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक ह्यूमर का जगह होना चाहिए, ये वही है।
0: And now to this horrible incident reported in the city of Mumbai. Three people were killed and one critically injured after a BMW crashed on Mumbai's coastal road in the early hours of Sunday. A black BMW was traveling from Marine Drive towards Haji Ali when it reportedly crashed into a boundary wall before plunging off the bridge. The impact left the luxury car severely damaged, with its front end crushed and the windshield and the roof badly wrecked. Four people were rushed to Naya Hospital following the crash. Three were declared brought dead, while a 20-year-old man remains critically injured. The wrecked BMW was later lifted and removed from the crash site using a crane. Police is now investigating the circumstances surrounding the crash, including the reported speeding that preceded the accident.
6: एक सुबह 5:20 में कॉल था कि एक ब्लैक रंग की BMW कार, उसका नंबर है DD01 C6302, ये गाड़ी मरीन ड्राइव की तरफ से हजेली की उधर नॉर्थ बाउंड पे जा रही थी तो कोस्टल रोड से नीचे गिर गई, और उसमें चार लोग थे। एक है आदित्य ओसवाल, वो जख्मी है, उस पर उपचार चल रहे नायर हॉस्पिटल में, और तीन लोगों की डेथ हो गई, तहरीर शेख, आदित्य जकासनिया, शनय गजर, और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
7: A major accident was reported on the coastal road in the early hours today morning, and a BMW was overspeeding and it resulted into it crashing down and falling off from this bridge where we are present. This is the coastal road, and below you see the condition of the BMW car. Four people were into the car, and because of overspeeding, three of them, they lost their lives, whereas one is currently injured and is admitted to Nair Hospital. According to the information from the Nair Hospital CMO, three injured persons were declared brought dead. The deceased have been identified as 21-year-old Shanai Gajjal and 17-year-old Dhirya Seth. The identity of the third deceased, a 25-year-old man, is yet to be confirmed. A 20-year-old male is currently admitted to the trauma ward and is reported to be in critical condition. The police is present at the spot, and like you see, all of the forensic teams are too present trying to inquire about the evidence to understand what exactly led to this incident happening. If you see the BMW car, it was flying into onto this road when it oversped, and it resulted into it falling from this very road off the coastal road. The forensic team is currently collecting evidence from the car to understand and estimate the entire condition behind this major accident taking place. And if you see, four people were present, and because of overspeeding, it led to this major accident taking place on the coastal road.
0: Now shifting our focus to IIT Mumbai, where student Sahil Varkoli and his death has triggered questions over circumstances surrounding the case and institute's handling of the matter. An FIR has been registered against IIT Bombay professor Surya Narayan Dhulla in connection with the death of Sahil Dhulla, and they've been booked for alleged abetment to suicide, caste-based intimidation and intentional caste-based insult. Two others accused have been left unidentified in the FIR. Protesting students are demanding an independent probe. They've also submitted a list of demands, including changes to the academic committees, grievance redressal and student welfare mechanisms. Meanwhile, Sahil's mother has alleged that the son was killed and seeking justice. The family has also alleged that Sahil faced harassment right before his death.
8: मेरे बच्चों को इन्होंने, जो डायरेक्टर है उन्होंने टॉर्चर करके, जातिवाद करके उसको आत्महत्या करने को ये करा, उन्होंने क्या करे वो उसकी चौकसी होने को ना। और इसके लिए सरकार को मेरी गुजारिश है, उनको मेरे बच्चे के जैसा न्याय मिलने को ना, उनको टर्मिनेट करने को ना, यही मेरी गुजारिश है। उनको जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त करने की मैं गुजारिश करता हूँ।
9: देखो, जब ऐसी कोई घटना घटती है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में घटती है, तो ऑफकोर्स सरकार उसे सीरियसली लेके इसके ऊपर एक्शन लेती है। अभी इस घटना के बारे में जैसा मुझे भी थोड़ा बहुत बताया, लेकिन अभी पूरा डिटेल इसके बारे में मैं, मतलब मुझे, मेरे पास ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन किस कारण हुआ या क्या वहाँ पर इश्यूज़ हुए थे, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके इसके ऊपर जाँच करके सही इसके ऊपर एक्शन लेगी।
10: जल्दबाजी हुई कहीं ना कहीं सिस्टम से, कि उसने ये माइंडसेट नहीं समझा स्टूडेंट का कि यार बच्चा है, गलती अब उसकी क्या एग्जैक्टली गलती थी क्या नहीं थी। जितना सुनने में आ रहा है, जितना मैं मानता हूँ कि ये दिखती तो कम से कम हकीकत होगी कि कुछ एकेडमिक मैल प्रैक्टिस हुई थी और उसको लेके कुछ उस पर एक्शन लेने की धमकी बोलिए या एक वार्निंग तो नहीं देती थी। अगर वार्निंग होती तो वो इतना नहीं डरता कि वो अपनी जान ले लेगा। तो कहीं ना कहीं एक जो तरीका था हैंडल करने का इस चीज़ को, बहुत ही गलत था।
0: The ABVP has retained the control of Delhi University Students Union, winning three of the four key positions. BJP has described the result as a setback for Congress-led student outreach, while Congress continues to question the election process. ABVP, which is a student outfit of the BJP, has swept three of the four key positions within the Delhi University Students Union. Yash Dabas has been elected as the president, Riya Chowdhury as secretary, and Lakshya Raj Singh as joint secretary. As a surprise and a pleasant one, independent candidate Dipanshu Shaukeen has won the vice president position. The result also saw independent candidate break into the top panel. Now, both ABVP and NSUI have been the two principal key parties as far as the student politics within Delhi University is concerned. Now, my colleague Manogya Loiwal spoke exclusively to all the winning candidates of the ABVP. New DUSU President Yash Dabal, Secretary Riya Chowdhury and Joint Secretary Lakshya Raj. Listen in to this exclusive conversation.
11: First question to you, Yash. What has been the biggest strength and the weakness, and who do you give the credit for this win?
12: My biggest strength is my the support I got from the students, and the weakness I could say maybe few points which do affect it, like you can say some students were not really interested in elections. And that's why you can see out of 1.5 lakh students, only 60,000 votes were polled. Though it was higher than the last time, but I think the

0: the Congress of insulting women and questioned its conduct and value. The opposition has come in to defend Rahul Gandhi. You have SP Chief Akhilesh Yadav, who has defended Rahul Gandhi and said that the principle of respect holds true for everyone. You have MTMC MP Saugata Roy, who sees that he sees no fault in it and pointed out that Narendra Modi himself used to engage in similar political humor.
1: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ। और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
2: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
3: शानदार खबरें दिखाएं, और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की मां के लिए, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने मां परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
4: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है। आज ही हमारे द्वारा बच्चों को, जब स्कूलों की बात आती है तो सांदीपनी विद्यालय के बलबूते पर राज्य के अंदर ड्रॉपआउट जीरो अगर हुआ है तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
5: नहीं नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं है, ये तो मोदी जो बोला है उसी को दोहराया जा रहा है, किसी को अपमान नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक ह्यूमर का जगह होना चाहिए, ये वही है।
0: And now to this horrible incident reported in the city of Mumbai. Three people were killed and one critically injured after a BMW crashed on Mumbai's coastal road in the early hours of Sunday. A black BMW was traveling from Marine Drive towards Haji Ali when it reportedly crashed into a boundary wall before plunging off the bridge. The impact left the luxury car severely damaged, with its front end crushed and the windshield and the roof badly wrecked. Four people were rushed to Naya Hospital following the crash. Three were declared brought dead, while a 20-year-old man remains critically injured. The wrecked BMW was later lifted and removed from the crash site using a crane. Police is now investigating the circumstances surrounding the crash, including the reported speeding that preceded the accident.
6: एक सुबह 5:20 में कॉल था कि एक ब्लैक रंग की BMW कार, उसका नंबर है DD01 C6302। ये गाड़ी मरीन ड्राइव की तरफ से हजेली की उधर नॉर्थ बाउंड पे जा रही थी, तो कोस्टल रोड से नीचे गिर गई, और उसमें चार लोग थे। एक है आदित्य ओसवाल, वो जख्मी है, उस पर उपचार चल रहे नायर हॉस्पिटल में। और तीन लोगों की डेथ हो गई, तहरीर शेख, आदित्य जकासनिया, शनय गजर, और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
0: A major accident was reported on the coastal road in the early hours today morning, and a BMW was overspeeding and it resulted into it crashing down and falling off from this bridge where we are present. This is the coastal road, and below you see the condition of the BMW car. Four people were into the car, and because of overspeeding, three of them, they lost their lives, whereas one is currently injured.

0: मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
1: शानदार खबरें दिखाएं और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की मां के लिए, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने मां परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता है, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है। आज ही हमारे द्वारा बच्चों को जब स्कूलों की बात आती है तो सांदीपनी विद्यालय के बलबूते पर राज्य के अंदर ड्रॉप आउट जीरो अगर हुआ है तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
3: नहीं नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं है, ये तो मोदी जो बोला है उसी को दोहराया जा रहा है, किसी को अपमान नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक ह्यूमर का जगह होना चाहिए, ये वही है।
4: And now to this horrible incident reported in the city of Mumbai. Three people were killed and one critically injured after a BMW crashed on Mumbai's coastal road in the early hours of Sunday. A black BMW was traveling from Marine Drive towards Haji Ali when it reportedly crashed into a boundary wall before plunging off the bridge. The impact left the luxury car severely damaged, with its front end crushed and the windshield and the roof badly wrecked. Four people were rushed to Naya Hospital following the crash. Three were declared brought dead, while a 20-year-old man remains critically injured. The wrecked BMW was later lifted and removed from the crash site using a crane. Police is now investigating the circumstances surrounding the crash, including the reported speeding that preceded the accident.
5: एक सुबह 5:20 में कॉल था कि एक ब्लैक रंग की BMW कार, उसका नंबर है DD01 C6302। ये गाड़ी मरीन ड्राइव की तरफ से हजेली की उधर नॉर्थ बाउंड पे जा रही थी तो कोस्टल रोड से नीचे गिर गई, और उसमें चार लोग थे। एक है आदित्य ओसवाल, वो जख्मी है, उस पर उपचार चल रहे नायर हॉस्पिटल में। और तीन लोगों की डेथ हो गई, तहरीर शेख, आदित्य जकासनिया, शनय गजर, और आगे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।
4: A major accident was reported on the coastal road in the early hours today morning, and a BMW, it was overspeeding and it resulted into it crashing down and falling off from this bridge where we are present. This is the coastal road, and below you see the condition of the BMW car. Four people were into the car, and because of overspeeding, three of them, they lost their lives, whereas one is currently injured and is admitted to Naya Hospital. According to the information from the Nair Hospital CMO, three injured persons were declared brought dead. The deceased have been identified as 21-year-old Shanai Gajal and 17-year-old Dhirya Seth. The identity of the third deceased, a 25-year-old man, is yet to be confirmed. A 20-year-old male is currently admitted to the trauma ward and is reported to be in critical condition. The police is present at the spot, and like you see, all of the forensic teams are too present trying to inquire about the evidence to understand what exactly led to this incident happening. If you see the BMW car, it was flying into onto this road when it oversped, and it resulted into it falling from this very road off the coastal road. The forensic team is currently collecting evidence from the car to understand and estimate the entire condition behind this major accident taking place. And if you see, four people were present, and because of overspeeding, it led to this major accident taking place on the coastal road. Now shifting our focus to IIT Mumbai, where student Sahil Varkode and his death has triggered questions over circumstances surrounding the case and institute's handling of the matter. An FIR has been registered against IIT Bombay professor.

0: Hello and welcome. You're watching NETV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Rahul's MP events Stokes Rao. Comedian mimics Prime Minister Modi. Rahul laughs off. Comedian's ma mimicry draws BJP flag. BJP calls it an insult to Prime Minister's mother. Killer crash in Mumbai. Three youth killed, one critical after speeding BMW crashes on Mumbai's coastal road, plunges off the bridge. Investigation underway. Probe widens in IIT Bombay suicide case. Professor booked for abetment. Professor accused of intentional caste-based slur and insult. India's medal tally rises to two as Ella Vanille Valavarayan clinches second silver medal for the country at the Asian Games. Ukraine launches long-range strikes on Moscow, targets Russia's key oil facility. Zelensky calls on Putin to end the war. The legal battle over control and governance at Tata Trust takes center stage as two of India's top lawyers speak to NDTV. Abhishek Manu Singhvi and Harish Salve join Rahul Kawal to discuss the Tata dispute, the legal questions involved, and what lies ahead. A mimicry act at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore has triggered a fresh BJP-Congress face-off. During the event, a young man mimicked Prime Minister Narendra Modi, with Rahul Gandhi seen laughing during the act. The BJP has alleged that the act also crossed the line by referring to Prime Minister Modi's late mother. BJP has stepped up its attack on Rahul Gandhi, and the Congress leaders, including Kiran Rijuju, Pralhad Joshi and Yogi Adityanath, have accused the Congress of insulting women and questioned its conduct and value. The opposition has come in to defend Rahul Gandhi. You have SP Chief Akhilesh Yadav, who has defended Rahul Gandhi and said that the principle of respect holds true for everyone. You have MTMC MP Saugata Roy, who sees that he sees no fault in it and pointed out that Narendra Modi himself used to engage in similar political humor.
1: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Maa ko kursi do. Maa, maa. Aur bataiye thoda. Maa ko kursi do. Maa, maa.
2: Congress ke युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
3: दार खबरें दिखाएं, और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की मां के लिए, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने मां परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
4: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने

0: Rahul's MP when Stokes Rao comedian mimics Prime Minister Modi. Rahul laughs off comedian's ma mimicry, draws BJP flag. BJP calls it an insult to Prime Minister's mother. Killer crash in Mumbai. 3 youth killed, 1 critical after speeding BMW crashes on Mumbai's coastal road, plunges off the bridge. Investigation underway. Probe widens in IIT Bombay suicide case. Professor booked for abetment. Professor accused of intentional caste-based slur and insult. India's medal tally rises to 2 as Ella Vanil Valavarayan clinches second silver medal for the country at the Asian Games. Ukraine launches long-range strikes on Moscow, targets Russia's key oil facility. Zelensky calls on Putin to end the war. The legal battle over control and governance at Tata Trust takes center stage as two of India's top lawyers speak to NDTV. Abhishek Manu Singhvi and Harish Salve join Rahul Kawal to discuss the Tata dispute, the legal questions involved, and what lies ahead. A mimicry act at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore has triggered a fresh BJP-Congress face-off. During the event, a young man mimicked Prime Minister Narendra Modi, with Rahul Gandhi seen laughing during the act. The BJP has alleged that the act also crossed the line by referring to Prime Minister Modi's late mother. BJP has stepped up its attack on Rahul Gandhi, and the Congress leaders including Kiran Rijuju, Pralhad Joshi and Yogi Adityanath have accused the Congress of insulting women and questioned its conduct and value. The opposition has come in to defend Rahul Gandhi. You have SP Chief Akhilesh Yadav, who has defended Rahul Gandhi and said that the principle of respect holds true for everyone. You have MTMC MP Saugata Roy, who sees that he sees no fault in it and pointed out that Narendra Modi himself used to engage in similar political humor.
1: और बताइए,
2: हाँ,
1: और बताइए थोड़ा।
2: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
1: और बताइए,
2: हाँ,
1: और बताइए थोड़ा।
2: माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
3: कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
4: दार खबरें दिखाएं, और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की माँ के लिए, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने माँ परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
5: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है। आज ही हमारे द्वारा बच्चों को, जब स्कूलों की बात आती है तो सांदीपनी विद्यालय के बलबूते पर राज्य के अंदर ड्रॉपआउट जीरो अगर हुआ है तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
6: नहीं नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं है, ये तो मोदी जो बोला है उसी को दोहराया जा रहा है, किसी को अपमान नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक ह्यूमर का जगह होना चाहिए।

0: while a Iranian clinches second silver medal for the country at the Asian Games. Ukraine launches long-range strikes on Moscow, targets Russia's key oil facility. Zelensky calls on Putin to end the war. The legal battle over control and governance at Tata Trust takes center stage as two of India's top lawyers speak to NDTV. Abhishek Manu Singhvi and Harish Salve join Rahul Kawal to discuss the Tata dispute, the legal questions involved, and what lies ahead. A mimicry act at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore has triggered a fresh BJP-Congress face-off. During the event, a young man mimicked Prime Minister Narendra Modi, with Rahul Gandhi seen laughing during the act. The BJP has alleged that the act also crossed the line by referring to Prime Minister Modi's late mother. BJP has stepped up its attack on Rahul Gandhi, and the Congress leaders, including Kiran Rijuju, Pralhad Joshi and Yogi Adityanath, have accused the Congress of insulting women and questioned its conduct and value. The opposition has come in to defend Rahul Gandhi. You have SP Chief Akhilesh Yadav, who has defended Rahul Gandhi and said that the principle of respect holds true for everyone. You have MTMC MP Saugata Roy, who sees that he sees no fault in it and pointed out that Narendra Modi himself used to engage in similar political humor.
1: Aur bataiye, aur bataiye thoda.
2: Ma ko kursi do, ma, ma.
1: Aur bataiye, aur bataiye thoda.
2: Ma ko kursi do, ma, ma.
3: Congress ke युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
4: शानदार खबरें दिखाएं, और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की मां के लिए, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने मां परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
5: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है। आज ही हमारे द्वारा बच्चों को, जब स्कूलों की बात आती है तो सांदीपनी विद्यालय के बलबूते पर राज्य के अंदर ड्रॉपआउट जीरो अगर हुआ है तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
6: नहीं नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं है, ये तो मोदी जो बोला है उसी को दोहराया जा रहा है, किसी को अपमान नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक ह्यूमर का जगह होना चाहिए, ये वही है।
0: And now to this horrible incident reported in the city of Mumbai. Three people were killed and one critically injured after a BMW crashed on Mumbai's coastal road in the early hours of Sunday. A black BMW was traveling from Marine Drive towards Haji Ali when it reportedly crashed into a boundary wall before plunging off the bridge. The impact left the luxury car severely damaged, with its front end crushed and the windshield and the roof badly wrecked. Four people were rushed to Naya Hospital following the crash. Three were declared brought dead, while a 20-year-old man remains critically injured. The wrecked BMW was later lifted and removed from the crash site using a crane. Police is now investigating the circumstances surrounding the crash, including

0: and welcome. You're watching NETV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Rahul's MP event stokes row. Comedian mimics Prime Minister Modi. Rahul laughs off. Comedian's ma mimicry draws BJP flag. BJP calls it an insult to Prime Minister's mother. Killer crash in Mumbai. Three youth killed, one critical after speeding BMW crashes on Mumbai's coastal road, plunges off the bridge. Investigation underway. Probe widens in IIT Bombay suicide case. Professor booked for abetment. Professor accused of intentional caste-based slur and insult. India's medal tally rises to two as Ella Vanil Valavaradian clinches second silver medal for the country at the Asian Games. Ukraine launches long-range strikes on Moscow, targets Russia's key oil facility. Zelensky calls on Putin to end the war. The legal battle over control and governance at Tata Trust takes center stage as two of India's top lawyers speak to NDTV. Abhishek Manu Singhvi and Harish Salve join Rahul Kawal to discuss the Tata dispute, the legal questions involved, and what lies ahead. A mimicry act at Rahul Gandhi's Chhatron Ki Goonj event in Indore has triggered a fresh BJP-Congress face-off. During the event, a young man mimicked Prime Minister Narendra Modi, with Rahul Gandhi seen laughing during the act. The BJP has alleged that the act also crossed the line by referring to Prime Minister Modi's late mother. BJP has stepped up its attack on Rahul Gandhi, and the Congress leaders, including Kiran Rijuju, Pralhad Joshi and Yogi Adityanath, have accused the Congress of insulting women and questioned its conduct and value. The opposition has come in to defend Rahul Gandhi. You have SP Chief Akhilesh Yadav, who has defended Rahul Gandhi and said that the principle of respect holds true for everyone. You have MTMC MP Saugata Roy, who sees that he sees no fault in it and pointed out that Narendra Modi himself used to engage in similar political humor.
1: Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do, ma, ma. Aur bataiye, aur bataiye thoda. Ma ko kursi do, ma, ma.
2: Congress ke युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, पूरी नारी शक्ति का वो अपमान है। जो भारत और भारतीयता को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उन लोगों से अपेक्षा करना कि वे वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को समझ सकें, या यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव को समझ सकें, मुझे लगता है कि देश को उनसे उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए।
3: दार खबरें दिखाएं, और हम तो पत्रकार साथी से कहेंगे, अगर आपको इतना ही इमोशन है किसी की माँ के लिए, तो यहां जितने लोग बैठे हैं सबका अपने माँ परिवार के लिए वही इमोशन है। सबकी मां वैसी इमोशन के साथ हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कोई गरीब हो किसी कोने में।
4: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, और जैसा कि होता है कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा अपने विषय के प्रति लापरवाह भी रहते हैं, आज भी वो बगैर तैयारी के कुछ ऐसे बच्चों को, कुछ युवा मित्रों को जिनकी बात क्वेश्चन आंसर में आना चाहिए थी, बात करना कराना चाहिए थी, ऐसा लगा कांग्रेस के लोगों ने केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही। बड़ा दुख होता, नेता प्रतिपक्ष बहुत महत्व का पद होता है। आज ही हमारे द्वारा बच्चों को, जब स्कूलों की बात आती है तो सांदीपनी विद्यालय के बलबूते पर राज्य के अंदर ड्रॉपआउट जीरो अगर हुआ है तो यह तथ्यात्मक आंकड़ा है जिसको कांग्रेस और उनके मित्रों को देखना चाहिए।
5: नहीं नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं है। ये तो मोदी जो बोला है उसी को दोहराया जा रहा है, किसी को अपमान नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक ह्यूमर का जगह होना चाहिए, ये वही है।
0: And now to this horrible incident reported in the city of Mumbai. Three people were killed and one critically injured after a BMW crashed on Mumbai's coastal road in the early hours of Sunday. A black BMW was traveling from Marine Drive towards Haji Ali when it reportedly crashed into a boundary wall before plunging off the bridge. The impact left